नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की।

0: नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार।

लीजिए सुनिए चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। आप सुन रहे थे चिंतन, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 299। 6:45 पर संगीत सरिता सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 2। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 सुबह और रात 9:30 पर आज के फनकार। आज का फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री साधना पर। आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनेगा। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति सुबैर खान की। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर।

दो बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नख में। सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनेगा। इसके अंतर्गत आज सुनेगा विश्व नारियल दिवस, शब्द हमारा विचार आपके, प्रसन्नता, साहियों का संसार, साड़ियों का संसार, मंगलगिरी साड़ियां, फूड पैकेट्स को पढ़ना सीखें, व्यंजन नारियल के व्यंजन होंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। पिटारा में शाम

चार बजे आज के मेहमान लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा। प्रस्तुति है अनुश्री पाठक की। पांच बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, सुनिएगा श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा। किराना घराना भाग दो। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। हवा महल में रात 8:00 सुनिए प्रहसन विवाह यंत्र भाग दो। लेखन N.R. टंडन का, निर्देशन है मुख्तार अहमद का। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान भाग 299।

अरे मूर्ख, वाक विलासिता से अपने मन को बहला कर अपने कुल का सर्वनाश न कर। श्री राम के विरोधी की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण के पत्र में लिखा ये संदेश सुनकर रावण भयभीत हुआ, किंतु सभासदों को दिखाने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, पृथ्वी पर खड़ा ये तुच्छ तपस्वी आकाश पकड़ने की डींग मार रहा है। दूत शुक ने रावण को समझाने की भरसक चेष्टा की, श्री राम से वैर न करने की प्रार्थना की, ये भी विश्वास दिलाना चाहा कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, शरणागत पर वो कृपा करते हैं, वे आग के अपराध भी क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, जनक नंदिनी उन्हें लौटा दीजिए, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। शुक को इस अनुनय के लिए रावण ने लात मारी और अपशब्दों की बौछार के साथ उसे सभा से निकाल दिया। इधर 3 दिनों की अवधि बीत जाने पर भी जब समुद्र ने पार जाने देने की विनती नहीं मानी तो श्री राम को क्रोध हो आया। उन्होंने अग्निबाण संधान किया जिससे सागर के हृदय में भीषण ज्वाला धधक उठी। सागर ब्राह्मण का रूप धारण कर मस्तक झुकाए आ खड़ा हुआ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। आज आपने सुना भाग 299।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, ये जो हमारी श्रृंखला है इसकी ये दूसरी कड़ी है। शकुंतला जी, इस घराने की विशेषता क्या है? ये पिछली कड़ी में आप इसकी बात कर रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वो कौन सी बंदिश होगी जिसकी हम चर्चा करेंगे?
2: तोड़ी राग की बंदिश।
1: जी जी।
2: और वो तोड़ी राग का जो विलंबित ख्याल है।
1: हाँ जी।
2: और विलंबित ख्याल में एक एक स्वर पर आगे कैसे जाने का है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है
1: जी।
2: और दूसरा जो द्रुत चीज है ना।
1: हाँ जी।
2: उनकी भी चर्चा करते हुए किराना घराने का जो स्वर का और शब्द का भी महत्व
1: जी।
2: लंगर कांकरिये जिना मारो, यानी क्या है लंगर? यानी श्री कृष्ण। कांकरिये यानी पत्थर।
1: अच्छा।
2: पत्थर मत मारो, मोरे अंगवा लग जात। सुन पावे मोरे सासन ननदिया।
1: हाँ।
2: दौर दौर घर आए। सासू और ननदिया
1: जी
2: दोनों जो है वो मेरे पीछे पड़ेंगे।
1: हाँ,
2: क्योंकि
1: हाँ।
2: आप मेरे पीछे पड़े हो।
1: ओ,
2: वो जो अच्छा। गोपिका है श्री कृष्ण के बारे में
1: कह रही
2: बोलती है।
1: हाँ।
2: और सब अर्थ जो है उसकी बढ़त जो है
1: जी
2: उसी हिसाब से किया हुआ है। और यही किराना घराने का जो परंपरा है
1: जी।
2: जो भाव शब्द सुर ताल स्वर प्रधानता
1: जी
2: ये सब लेकर हमें आगे जाना है। और उसमें मेंढ गायकी और उसका जो छोटा छोटा मुर्की खटका ये सब किराना गायकी का एक नजाकत ढंग है।
1: आज शुरुआत किस बंदिश से हो रही है?
2: शुरुआत तो

0: मुझे जैसी की है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा गा के भी दिखाती हूँ। मियाँ की तोड़ी सुबह करते थे, शाम को राग या मन करते थे
1: जी।
0: सुबह सिर्फ उसके आलाप तान और शाम को उसके पलटे या मन के पलटे, ऐसा हमारा सिलसिला चालू था। मियाँ की तोड़ी मैं गाती थी। एक इंसिडेंट बोलती हूँ मैं, किराना घराना का महत्व समझाने के लिए। मेरी गुरुजी डॉक्टर गंगूबाई हनगल, उनसे हम अक्का जी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: मैं रियाज करती थी, उनकी तालीम चालू थी, वो कभी सामने नहीं बैठती थी क्योंकि मैं डरती थी उनको बहुत, उनके सामने गाने के लिए। अंदर बैठ के गाना सुनती थी और मैं तोड़ी गा रही थी।
1: अच्छा।
0: और हो गया सा, सा प्रस्थापित हो गया, सा रे, बाद में एक एक स्वर गाने का ना हमारे स्वर, रे हो गया, ग हो गया। रे पर मैं सारे निसारे धनी रे धरे रे रे सानी धनी रे, ऐसे बहुत सारे वैरायटी करने के बाद मैं गई गंधार पर।
1: अच्छा।
0: गंधार पर जाते ही गंगूबाई जी बाहर आई।
1: अच्छा।
0: पूछने लगी क्या हुआ, रिखब लगा? रिखब नहीं लगा, और गंधार पर कैसे गई और क्यों गई? मुझे तब समझ भी नहीं आया, उतना समझ भी नहीं था गाना। वो बताई कि आप क्या रंगमंच पर बैठकर गा रही हो क्या?
1: अच्छा।
0: एक सुर लगे बिना आगे नहीं जाना है।
1: ओ।
0: एक सुर का जो गोलाई है, उसकी जो जगह है, वो वही रखनी है, बाद में आगे जाना है। ये थोड़ा हम तोड़ी सुनेंगे अभी।
1: स्वागत है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं इस गाने से। फिल्म का नाम है लव इन शिमला।
1: एल
2: ओ
1: वी
2: ई
1: लव। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस संदेश के पहले जो गाना आपने सुना उसे हमने लव इन शिमला फिल्म से लिया था। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोलते, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी। अब हम आपको परख फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: घुट घुट के जल तो मेरे नाड़ने, ओ मेरे नाड़ने।
1: परख फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे सलिल चौधरी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पत्र फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं राजेंद्र कृष्ण के बोल।

0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम पत्र फिल्म से, रचना राजेंद्र कृष्ण की थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

0: मनमौजी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन के तर्ज।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

उस्ताद पेड्रो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में असद भोपाली की रचना थी। सी आरजू ने इस रचना की धुन बनाई थी। भूली बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। श्रोताओं, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन है। साधना अपनी अलग अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री साधना अपने हेयर स्टाइल के लिए भी जानी गई थी। उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम जरूर सुनिएगा 9:30 और 9:30, जो केंद्रित होगा अभिनेत्री साधना पर। अब हम आपको सुशीला फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, मुबारक बेगम की आवाज़।

0: सुशीला फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल जानिसार अख्तर के थे, संगीत सी अर्जुन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

श्रोताओं, पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें थी। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे सी अर्जुन। हमें अफसोस है कि ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, और इसी अधूरे गीत के साथ आज का हम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सविता सिंह को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म से। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अगला गाना आपको एक मुसाफिर एक हसीना से सुनवा रहे हैं। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं।

0: थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बोल राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे, तर्स ओपी नैयर ने बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन रवि का था और वक्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। श्रोताओ, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन जन्मतिथि है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, सादगी और भावपूर्ण अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के पर्दे से दूर होकर भी साधना जी की खूबसूरत यादें और उनका अभिनय हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगा। उन्हें सादर नमन करते हुए सुनते हैं।

0: एक फूल दो माली फिल्म का गीत अब आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी, रचना प्रेम धवन की थी और संगीत रवि का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: मेरे महबूब फिल्म का गीत लीजिए अब सुनिए। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद की तर्ज है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को

0: बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जिरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
6: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी

0: गए हुए हैं।
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़

के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में स्वर सुरों का आधार है, तो जीवन में स्वर हमारे व्यक्तित्व की

किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है। एक माँ की पुकार में ममता का स्वर होता है, पिता की आवाज में विश्वास और शिक्षक के स्वर में मार्गदर्शन। प्रकृति भी अपने अनगिनत स्वरों में जीवन का संगीत रचती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, बहती नदी की कलकल और वर्षा की रिमझिम, हर ध्वनि अपने भीतर एक अलग अनुभूति समेटे हुए है।

इन स्वरों को सुनने के लिए केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं। सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी। मौन भले ही निशब्द हो, लेकिन उसमें छिपे भावों का स्वर बहुत गहरा होता है। स्वर भावनाओं की भाषा है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन के संगीत की पहली धुन है। जब हमारे शब्दों में संवेदना और स्वर में मिठास होती है, तब साधारण सी बातचीत भी किसी सुंदर कविता की तरह मन में उतर आती है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले

0: की यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।

0: विशाल शेखर, शिल्पा राव और साथियों की आवाजों में फाइटर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को कुमार और साथियों ने और विशाल दादलानी ने मिलकर लिखा था और विशाल शेखर ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रोचक कोहली की आवाज में धड़क टू फिल्म का गाना। गुरुप्रीत सैनी का लिखा ये गीत है और रोचक कोहली का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक।

0: नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजों में वनवास फिल्म का ये गीत अभी सुन रहे थे आप।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आज नेशनल कोकोनट डे यानी राष्ट्रीय नारियल दिवस है। नारियल हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य का प्रतीक होता है। यही नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त ऐसा एक उपहार है जो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल तो यही ऐसा फल है जिसमें कोई मिलावट नहीं किया जा सकता। भले ही ऊपर से देखने में कठोर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अत्यंत सरस और सरल कोमल है। नारियल का पानी हमें तुरंत ताजगी देता है और इसका नित्य उपयोग तमाम तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। सेहत के लिए ये वरदान सिद्ध है। हमारे देश में हर शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर या पूजा की थाली में सजाकर या कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के रोजगार और भोजन का भी ये मुख्य साधन है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात हर इच्छा की पूर्ति करने वाला पेड़ कहा गया है इसे। राष्ट्रीय नारियल दिवस मनाने का ये उद्देश्य है कि हम इस पेड़ की सुरक्षा और सम्मान करें। नारियल का पेड़ ये सीख देता है कि खुद ऊंचाई पर रहते हुए दूसरों को सुख दे, खुद ऊंचे रहकर भी सरल सरस और मीठा पानी दे, मर्यादा में बने रहें, मीठे बने रहें, छाया दें और अनेक लाभ दिए जा सकते हैं। तो आइए हम भी ये तय करें कि हम भी पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। जैसे प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि प्रकृति प्रदत्त हर चीज को संभाल कर रखा जाए। अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में तमाशा फिल्म का ये गाना। लकी अली की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी।
5: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग

चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं और आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का ये गाना।

ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी जुबिन नौटियाल की थी, कुमार के बोल थे सौरभ रॉय, मीत ब्रदर्स का संगीत था। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, यानी जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। हमारे जीवन में भोजन या जो भी हम खाते हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि भोजन शरीर को स्वस्थ रखने और मन मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और साथ में पर्याप्त जल। पर्याप्त मात्रा में पानी उतना ही उपयोगी है जितना भोजन। पोषण केवल बच्चों के विकास के लिए नहीं होता, बल्कि हर उम्र के हर वर्ग के लिए जरूरी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसका भी संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मसालेदार और केमिकल से युक्त भोजन हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार यानी घर का बना हुआ साफ सुथरे भोजन की ओर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर के पोषक तत्व दें शरीर को और बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भारत फिल्म का गीत आवाज थी अभिजीत श्रीवास्तव की, इरशाद कामिल के बोल थे अमाल मलिक का, संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था कपूर एंड सन्स फिल्म से। बादशाह फैजलपुरिया सुकृति की आवाजें थी, कुमार के बोल थे अमाल मलिक का संगीत था, और अभी आपने भारत फिल्म का गीत

भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ें थी और साथियों की आवाज़ें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था और शंकर एहसान लॉय की ये तर्ज आपने सुनी।

अंधाधुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों 25 अगस्त से 9 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। अपने जीवन के बाद भी अगर किसी की दुनिया को रोशन करने का हम संकल्प लें तो यही है उद्देश्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का।

पलक मुछाल पुनीत अवस्थी की आवाजों में कंक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रभात कुमार ने इस गीत को लिखा था, पुनीत अवस्थी ने इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाए, किसी के काम आए। हमारा छोटा सा फैसला किसी दूसरे की पूरी दुनिया रोशन कर दे, हमारी आंखें किसी की आंखों में खुशी ला दें। हमारे जाने के बाद यदि हमारी आंखें किसी और की आंखों में सपने दिखाएं, उम्मीद दिखाएं, खुशी लाएं। जिसने अपनी उम्मीद खो दी हो, जो उदास हो, तो इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। इसी सोच को लोगों तक पहुंचाने और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो चलिए हम खुद जागरूक बने और दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरि शिवदासानी के भाई थे और हरि शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बम्बई यानी आज की मुंबई आकर बस गई। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

0: साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।
1: मुड़ मुड़

0: एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।
1: मैंने

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कौन थी? जी, मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का

साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और

0: हीरोइन साधना।
1: ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया।

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।

0: हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

ये हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी

0: दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।
1: सुनिए

और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा है।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइसे फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूँगा।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
2: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिये, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
1: जी,
2: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
1: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती हैं।
2: तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
1: जी,
2: लेकिन जो एक
1: सफर का साथी,
2: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने, वो खासतौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था? और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
2: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।
1: अच्छा,
2: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी
1: जी।
2: नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
1: जी,
2: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
1: क्या बात है।
2: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
1: जी,
2: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
1: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
2: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा ऐसा सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
2: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने IIT का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो JEE का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा

0: अब हो गई पढ़ाई
1: हाँ
0: साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया। बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक,
1: जी
0: और फिर यह एएमयू से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने।
1: जी
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है, तो मुझे
0: जी
1: लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे
0: जी
1: कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता है।
1: जी
0: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए।
1: जी
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है, वो दो प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी
0: जी
1: सुना है।
0: जी तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं, और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत
0: अरे
1: सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत, प्यार किया तो डरना
1: प्यार
0: क्या।
1: किया तो डरना क्या,
0: जी
1: आइकॉनिक गीत।
0: जी
1: बिल्कुल सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते हैं लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये
1: जी
0: दोनों कैसे चली, पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी उर्दू अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से, और वो यही आता था। तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की लोगों से काम मांगने का।
0: जी,
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
0: बिल्कुल, वो एक नींव है
1: जी,
0: जहां से सब चीजें शुरुआत होती है और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
0: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: क्या बात है, क्या पसंद है, सुनवाते हैं गीत
1: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है,
1: जी
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है।
1: जी
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं।
1: जी
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई, संजय लीला भंसाली की फिल्म से,
1: जी
0: हम दिल दे चुके
1: रामलीला
0: सनम,
1: भी उनके साथ
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर।
1: जी
0: बिल्कुल अलग किरदार,
1: जी
0: और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही।
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों
1: जी
0: का काम करने का तरीका एकदम अलग,
1: जी
0: तो क्या डिफरेंस है? और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो हैं वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी,
1: तो
0: लार्जर देन लाइफ
1: लार्जर देन लाइफ,
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में, और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज़ में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी
0: बिल्कुल
1: वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज़ में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज़ बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक
0: बिल्कुल
1: कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल हाँ
1: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
0: अच्छा
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते।
0: जी
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं कि
0: जी
1: जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो। वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है वो।
0: बिल्कुल
1: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि अब वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है, क्योंकि वो
0: स्पॉन्टेनियस
1: हाँ
0: स्पॉन्टेनियस
1: स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें।

0: कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया,
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
1: श्रीकांत,
0: श्रीकांत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा
1: हाँ
0: टफ था,
1: जी
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
1: हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: सुना
1: बिल्कुल
0: है, देखा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर। मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ हाँ
0: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
1: बिल्कुल
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
1: जी
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
1: अच्छा,
0: कि ये
1: ज्यादा
0: सही।
1: तैयारी के साथ
0: हाँ
1: उतरे
0: हाँ
1: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के
1: क्या बात है, आपकी पसंद।
0: जी
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है।
1: जी
0: गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है,
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो
1: जी
0: एपिसोड्स आएंगे।
1: जी दो चीजें देखिए, उसमें शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया, ऐसा
1: घर घर
0: लगता
1: का
0: है
1: हिस्सा
0: हमारे
1: हो गया।
0: घर के
1: और मेरे
0: मेहमान हैं।
1: लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा,
0: जी
1: स श
0: हाँ
1: ज, और
0: बिल्कुल
1: मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी,
0: जी
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल क्या
1: क्या
0: चुनौतियां
1: क्या
0: हैं,
1: चुनौतियां हैं। तो
0: बिल्कुल
1: उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है, और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
1: जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी
0: जी,
1: आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा करना, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है, क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है।
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि
0: जी
1: मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जब मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाइए मत, वो जो शब्द था ना,
0: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है। बिल्कुल
1: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
0: बिल्कुल।

0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूँगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं, और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ द सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट।
1: उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पर ख़त्म भी हो जाता था।
1: जी।
0: तो वो एक एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
1: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा।
1: जी
0: अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है कर लीजिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूँगा उसको,
1: जी
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी मैं करना ज़रूर चाहूँगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो चीज़ की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतज़ार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जात्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक अभी फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज़ में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगी मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा।
1: जी
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज़ में से तो गुल्लक सीज़न 6 आएगा अगले
1: उसका
0: साल।
1: इंतजार
0: हाँ,
1: रहेगा हमें।
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा
1: जी
0: जा रहा है वो।
1: जी
0: तो यही सब हैं, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आएँ। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार
0: जरूर
1: रहेगा।
0: जरूर।
1: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं, तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी।
1: जी
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी।
1: बिल्कुल। सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप
1: जी
0: एक ही स्कूल से हैं, बच्चन
1: जी
0: साहब जहां से
1: जी
0: पढ़े
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई
1: जी
0: में,
1: जी
0: तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी,
0: जी
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी उसमें हुई, और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं हैं।
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में, और उन्होंने पहचान लिया जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले,
0: जी
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन है,

0: डॉक्टर से बात हो रही होगी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
1: जी,
0: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल हैं हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और लेजेंड हैं वो। तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे, तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी
1: कभी कभी मजेदार भी होती है,
0: जी जी
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी दरअसल, एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था, तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया, फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा। मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और
0: हाँ तो सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुआ था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई
1: जी।
0: तगड़ी, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी, फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
1: बेहोश हो गए
0: कुछ
1: जी।
0: मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँगा मैं, फिर होश आया तो कह रहे सर उसने मुझे, फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है
1: अच्छा,
0: हाँ कुछ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी
0: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए,
1: हाँ
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का,
1: बिल्कुल
0: और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देखा चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिए वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि नहीं अरे ये वहां से रोको यार भाई नहीं
1: जी,
0: आ रहा है
1: जी
0: तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते, जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके
0: हाँ
1: से।
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी,
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना और एज एन

0: मुझे शब्द जो हैं, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ। और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ।
1: जी
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं बताया, डायरेक्टर को नहीं बताया कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है।
1: जी
0: और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी ज़बान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है, आपका
1: आजकल
0: अंदाज बदल जाता
1: वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से
0: है।
1: पहले,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक एक होता है ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना,
1: जी
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज़ की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी,
1: जी
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया, और फिर शूट करके टाइम तो और ज़्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने
1: बिल्कुल
0: लगा।
1: दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़
0: जी
1: रहा है।
0: जी
1: यहां पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते,
0: जी
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं,
0: जी
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट नहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक की कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का
1: जी
0: कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा थिएटर में। जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन
0: जी
1: वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है, पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से
0: बिल्कुल
1: बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों,
0: बिल्कुल
1: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में
1: हाँ
0: कुछ बताएं।
1: हाँ वो भी देखिए, ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पाँव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए, वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना
1: जी
0: ज्यादा
1: जी जी
0: ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी
0: से।
1: जी जी और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
0: जी
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
0: जी
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस
0: उस
1: बात को समझना कि
0: दृष्टिकोण से देखना।
1: हाँ, कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूं, और मैं सीरियस कम रहता हूं लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं, बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से, और इस तरीके से काम भी करता हूं कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
0: बिल्कुल
1: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
0: जी
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है,
0: जी
1: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
1: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें
0: जी,
1: इसी में हम सबकी भलाई है।
0: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, रंग तरंग।
0: कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा।

मीरा भाई का ये मीरा बाई का लिखा ये पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ उषा मंगेशकर की आवाज में फागुन फिल्म से। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बेला सिंधे की आवाज़ में आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे जहां चलेगा
1: मेरा साथ। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधु एस तिवारी की आवाज, उन्हीं के बोल और उन्हीं का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: इला अरुण और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे वेल डन अब्बा फिल्म का गीत, इला अरुण और डैनियल जॉर्ज के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर रंग तरंग।
1: रूपवती कमलावती भानुमती।

0: लव शवते चिकन खुराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। दिल बहार और रेणु जगोत्रा की आवाजें, शैली के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने

0: म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

आपकी पसंद इस एल्बम से मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे शेख आदम अबूवाला की लिखी गजल, अर्जन दासवानी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

लकी अली की आवाज में आप सुन रहे थे सिफर। इस एल्बम से गीत सईद असलम ने से लिखा, लकी अली का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कव्वाली, कल्लन खान कव्वाली और पार्टी की आवाज में।

अदनान सामी और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कव्वाली आपने सुनी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में निदा फासली के बोल, एमएम क्रीम का संगीत है, सुर फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, AI और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले

0: नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं, मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
1: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
1: जी
0: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओ एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार न भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित एक कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Ram Shangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Om Shangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Om Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Om Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.
4: It is a rose.
3: Good. Now try another thing.

0: What do I hold?
1: I know! It is the bell! The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Anushala took the bell and shook it herself.
0: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Om Shangla touched it.
1: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
1: A glass of water?
0: Are you sure? It could be milk or juice.
2: Om Shangla tasted it.
1: Oh, it is not water. It is orange juice.
0: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
2: She took off the scarf. Om Shangla blinked and looked at her.
1: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
0: So, Om Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
1: Yes, Ava.
0: Good girl.
2: Om Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
0: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एक्सिट नहीं दिखा, और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: आज इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
7: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
8: साथियों नमस्कार।
9: नमस्कार साथियों।
8: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
9: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
8: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
9: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं।

0: वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
5: 13, 12, 11। ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
2: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4।
2: मेरी तरफ देखो
5: सू, only 4।

0: सिर्फ तीन बचे हैं। क्या तीन बचे हैं? What's three, Jia?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सो,
0: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉनसी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई।

0: साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: खुद अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी। कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेयरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेयरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेयरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास।

0: पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनविच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।

0: रिश्ता कागज का फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और माझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत, जिसे गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने, सावन कुमार टाक ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक और साथियों की आवाजें सावन कुमार टाक की बोल और राजेश रोशन का संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें, मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम इस कार्यक्रम में एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत आपको बता दें, लाख कहे कोई धन को माया, ये तो सबके मन को भाया। रुपया हो या पैसा बाबू, इसके दम पर चलता जादू। कोई ये कहे कि उसे धन की चाह नहीं तो भला ये बात कोई मानेगा? पैसों और कमाई के मामले में तो सभी यही कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वैसे तो कुछ ये भी कहते हैं कि पैसों की बारिश हो जाए और हम उसमें न सिर्फ भीगें बल्कि कुछ भर भी लाएं। वैसे पैसे कमाने से ज्यादा उसको बचाना जरूरी लगता है और ये काम बड़ा मुश्किल है। कुछ तो पाई पाई बचाते हैं तो कुछ अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों की कमाई भी लुटाते हैं। कुछ इस कैश के लिए पसीना बहाते हैं तो कुछ बैठे बैठे ही सब कुछ पा जाते हैं।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनुष्य के सबसे कमजोर नब्ज को टटोलती और कुरेदती इबारत है, मोह माया में तृष्णाग्रस्त जीवनकाल आर्थिक उपार्जन और संबलता प्राप्त में व्यतीत हो जाते हैं। उत्तरदायित्व बोझ तले मानसिक अवस्था पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में जरूरत और व्यसन के माध्यम आर्थिक मेरुदंड को सुधारने में ही गुजरता है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अगर इनकी बात को संक्षेप में कहें तो ये कहना चाहते हैं कि धन उपार्जन में ही इंसान का जीवन आधा से ज्यादा व्यतीत होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अच्छी बात धन की ही की गई है आज, बहुत अच्छी बात, उसे केवल रुपए पैसे सोने चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से ही आंका गया है, जबकि एक सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं अपितु मूल्यवान धन कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से गणना इसकी नहीं की है, वो धन है संतोष धन, जो वैष्णव परंपरा का द्योतक है। फिर इस दृष्टिकोण से ही तो कवियों ने गाया कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान रे, जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूरी समान रे। तो ये संतोष धन हम सब में समाये, ऐसे ही प्रयासों की अपेक्षा मनुष्य से की जाती रही, किंतु ऋण लेकर घी पीते रहने की आदत के चलते हम अपने यायावर रूप को भूल चारवाक दर्शन के अनुयायी हो चले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर हर व्यक्ति की अनिवार्य जरूरत और आकर्षण का केंद्र है धन। धन का प्रभाव सार्वभौमिक है और जीवन की अधिकांश व्यवस्थाएं इसी की शक्ति पर टिकी है। पैसा कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक या कठिन है उसे संभालना और बचाना। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि पैसे को कमाना फिर भी एक बार आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना और उचित तरह से खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं उचित तरह से पैसों को खर्च करने के लिए, हमें बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या आप संतोषी जीव हैं या आपको हमेशा लगता है कि अभी तो

कुछ पैसे कम हैं और कमाई करने की जरूरत है। वहीं ये भी बताइए कि पहली बार आपको पैसे की कीमत कब समझ में आई थी और पहली कमाई क्या थी। ये सारी बातें तो करेंगे, लेकिन आपको पहले हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आपको बताना है किस फिल्म का है।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना है?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हालांकि इस गीत के बारे में देखते हैं ये गीत आपकी और हमारी लिस्ट में मैच करता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि धन तो माया ही है जो हमारे ध्यान के पथ से भटकाते हुए संसार में बांधे रखने का कार्य करते हुए अपने गुणित अनुपात में बढ़ता ही जाता है। प्रक्रिया धन के वास्तविक स्वरूप के कारण ही संभव है, लेकिन अब देखना ये होता है कि हम धन के इस गुणित अनुपात को धन या ध्यान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं क्या। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो है, पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को तो भारी कर सकती है, लेकिन आत्मा की खाली जगह को नहीं भर सकती। असली खुशी किसी तिजोरी की मोहताज नहीं, वो तो मन के किसी सुकून भरे कोने में रिश्तों की गर्मजोशी और एक सादे पल में चुपके से मुस्कुरा देती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मालिक इतना दीजिए, उन्होंने वो बात याद की है, मालिक माई साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ध्यान में रखने वाली बात है कि इतना धन तो जरूर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो किसी के आदर सत्कार कर सके और खुद भी खा सके, लेकिन बहुत ज्यादा की बात सोचना, वहां हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग तरह का लालच अपने मन में ना लाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी हमें बता रहे हैं, और हमारे साथियों का कहना है कि आज की बात, बिना मनी के यानी कि बिना धन के तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन सब चीजों को एक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ये विश्व नारियल दिवस के मौके पर ये तो नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन संपत्ति को ध्यान में रखकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पाते, जब तक दमड़ी तब तक ही है संगी साथी। तो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो बस इतना ही कहेंगे, पैसा इतना जरूर हो कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए और कभी किसी का काम भी आ सके। ज्यादा की चाहना रखी ही नहीं, ना ही फिर भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है। असली धन दौलत तो परिवार होता है, दोस्त होते हैं और कुछ अपनों का साथ होता है, और सबसे बड़ा ईश्वर का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है, और एक सच्चा साथी विविध भारती। अब देखो ना, इसमें कोई बहुत दिन तक नहीं आता तो उसको याद करते हैं, और अगर नहीं सुन पाते तो बेचैनी सी लगती है, पर आज कब से लग रहा था, हमने इबारत ही नहीं देखी, तो ये भी किसी दौलत से कम नहीं। वाकई ये दौलत भी

आप लोगों का जो ये प्यार है वो तो किसी भी दौलत से अनमोल है हमारे लिए, और आपका ये प्यार हमें मिलता ही रहता है, विविध भारती को मिलता रहता है पूरे वक्त। हमारे बहुत से साथी हैं वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं, और हमारे एक साथी ने उस गीत को जो शुरुआत में हमने गीत सुनवाया था काला बाजार का, उसमें कहा कि गीता दत्त की आवाज़ तो उन्हें पहचान आ रही है, दूसरी आवाज पहचान नहीं आ रही, पर हमारे दूसरे साथियों ने तो ये जवाब दे दिया था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, सच्ची खुशी तो मन के भीतर ही कहीं सोई रह गई, मन भागता है उम्र भर जिस मृग तृष्णा के पीछे, वहां सुख नहीं बस इच्छाओं का एक अंतहीन सिसकन है। तो बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि लॉटरी लग जाए हमारी और ढेर सारे पैसे एक साथ हमारे पास आ जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है हमें बताइए, और क्या कभी आपको इस तरह से कोई धन मिला जब आपको लगा कि भाई ये तो बोनस हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, हमें बताइए। और बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी, तो ऐसा कोई कमेंट अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। और अगर कभी लॉटरी लगी या कभी ऐसा लगा कि किसी तरह से बहुत सारे पैसे मिल जाएं, अगर मिल जाएं तो क्या करेंगे आप, ये भी हमें बताइएगा। ये तो ठीक है कि पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सोचने में क्या जाता है अगर आप सोचें कि आपके हाथ लग जाए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नहीं, लाखों ना सही, हजारों में ही लग जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? जितना आप चाहते हैं कुछ अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह जाग जाती है, कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा अपनापन और ढेर सारा संतोष ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, लेकिन धन दौलत के बिना मान सम्मान सुख सुविधा नहीं होती है, इसलिए धन दौलत बहुत कमाना चाहिए, दौलत के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि खुशियों को दांव पर लगाना पड़े, दोनों का संतुलन जरूरी है। मन में हमेशा तो यही गीत चलते रहता है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यानी कि ये एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें सोचें कि नहीं धन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पर हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जो हमारे साथी ने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट लिखा है जिसे हम हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। उन्हें कहा कि सभी को अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे एक, हमें गुल्लक लाकर दिया था दोनों के लिए, और जो भी पैसे हमें मिलते थे गिफ्ट में, जो भी लोग आते थे या त्योहारों के समय जो भी पैसे मिला करते थे, उसे हम इसमें जमा करते थे और कुछ समय के बाद उसे खोलते थे। वो जब भी खोलते थे तो हम देखते थे कि उसका क्या परिणाम होता है, तो जब भी जो बचत का परिणाम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि और भी बचाना चाहिए। वहीं हमारे का साथी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी अमीरी बैंक खातों में जमा अंकों से नहीं बल्कि मन के संतोष से तय होती है। संत कबीर दास जी का ये दोहा केवल दो पंक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत, करुणा और मर्यादा का सबसे खूबसूरत आईना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु ना भूखा जाए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाणक्य की नीति के अनुसार कह सकते हैं कि पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या ना तद्धनम। सरल हिंदी अर्थ है, विद्या यदि केवल पुस्तकों में रखी रहे यानी कंठस्थ ना हो तो उपयोग में ना लाई जाए, और धन यदि दूसरों के हाथों में चला जाए तो जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या किसी काम की रहती है ना ही वो धन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण मुझे कॉलेज पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है पहले ट्यूशन 1978 में 10 रुपए माह में शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा तो नहीं पा सका किंतु बच्चों को उच्च शिक्षित कर इंजीनियर बनाकर वो सपना पूरा किया। तो कई बार हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, पर यकीन मानिए जब हम ऐसे अपने पैसे खुद कमाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है वो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है जो सभी के पास नहीं होता। तो अब हमारे साथी ने चाय पर भी एक कहानी लिख भेजी है, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। और इसको किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा, क्योंकि जिस फिल्म का जो नाम है उस पर भी बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

कर्ज, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमने कहा था कि इस फिल्म के नाम से कुछ तो बात करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं और जरूरत नहीं भी होती है, तो भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर, उधार लेकर अपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जीते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि जितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्च करें। तो उधार लेने की आदत तो बड़ी ही खतरनाक होती है, ऐसा कहा जाता है। और उधार देने की आदत में भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्ज आपने दिया हो और उसे वसूलना बड़ा मुश्किल हुआ हो, या आप कभी खुद कर्ज लिए हो और आपको देना मुश्किल पड़ा हो। वैसे हमारे एक साथी ने चाय की कहानी लिखी है कि एक महाशय रोज अपने दोस्त से घर पर चाय पी लेते, ठीक चाय के समय आते, बेचारे शिष्टाचार वश उन्हें चाय भी देते। रोज उन्होंने अपनी आदत बना ली। एक दिन चाय पत्ती चीनी में कुछ कमी थी, चाय थोड़ी बनी थी और पत्नी खींची हुई थी। उसमें धीरे से अपने पति को बुलाकर चाय पिला दी और परिवार के सदस्य बारी बारी से उठकर अंदर जाकर चाय पी लिए थे और पीकर बाहर आ जाते तो महानुभाव समझ गए कि आज चाय मिलने के आसार नहीं है। वो भी उतने ही ढीठ बोले, भाभी जी मुझे भी भीतर से बुलाकर कुछ बातें कर लीजिए, तो बातें पूछ लीजिए। तो वो शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि भाई इन्हें तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है। वहीं एक साथी का कहना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आशा, इसी आशा से अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूं, क्योंकि धन से तो कभी मन संतुष्ट नहीं होता। जितना धन होता होगा उतनी बेचैनी होती है। सुकून उसी में है जो उसके पास है, उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए।

छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही सुकून का सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो वाकई एक सुकून का धन तो एक अलग ही चीज होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो और दिक्कत, बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए और कोई अंत नहीं है इस चीज का, बस खुशी भरा अपनों का साथ होना चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर ये बहुत जरूरी है। मन, मैं तो संतोषी लेडी हूं, ऐसा हमारे एक साथी कह रही है कि पैसे आज के टाइम पर बहुत जरूरी हैं। हम तो पूरी बचत करते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां खर्च करते हैं, पैसा कमाना मुश्किल भी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महमूद जी की फिल्म सबसे बड़ा रुपया आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। विलेन का रोल महमूद जी ने जरूर किया, लेकिन एक सबक देने का प्रयास किया है। और एक साथी कहते हैं कि धन बढ़ाने के ऊपर मेरी अपनी निजी राय ये है कि हर धन हर कोई बचा सकता है, लेकिन रिश्ते बचाने बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन रिश्ते आपके हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। धन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले सकते। रिश्ते जिसके बच्चे हैं अच्छे हैं, वही सबसे बड़ा बचत है, वही सबसे बड़ा धन है। और एक और साथी कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे की अहमियत सब समझ में आती है। जब कोई बीमार होता है तब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, या कहें कि जब पैसा होता है तो इलाज के लिए हम पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई। तो कुछ एक बात ऐसी करते हैं जो काफी दिनों से की नहीं, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है गीत, तो पहले ध्यान से सुनिए ये अंश।

0: मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।
1: तो आपको ये बताना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है ये, और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि इस फिल्म का है।

किंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप।

झन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that भैया सबसे

हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा।

0: सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लावारिस फिल्म का गीत काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है, ये गीत तो आपको सुनवाएंगे। लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों, पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपये मिला था एक पर्स में। मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की, अगर उनके पास पैसे थे और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती, प्यार और खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें, मतलब सीक्रेट इज़ टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों की पहचान करें। और कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेजी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जिसे हमने हिंदी में सुनाया, और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है, हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से, अपनत्व से, जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है, जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर लावारिस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त, सुनते हैं। और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।
1: चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

लावारिस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया इस गीत को, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तब मेले में और भी सामान के साथ मिट्टी के गुल्लक लाते थे और समय समय पर मिलने वाले पैसे उसमें डाल देते थे। कुछ समय बाद तीज त्योहार पर खोल कर उन पैसों से मनचाही चीजें खरीद लेते थे। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा जरूरी नहीं, स्वास्थ्य जरूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है मगर जीते जी यही पैसा दुनिया का हालचाल बता जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो नहीं, जरूरी तो है पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वही हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध चाय पत्ती शक्कर रोज कमा कर रोज दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीजें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहां सासू माँ ने 100 रुपए दिए और मौसी सास ने भी 100 रुपए दिए। वहां से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी, टिकट ले लिए लेकिन सुपर फास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया। ट्रेन जैसे ही आगरा पहुंची तभी टिकट चेकर आ गया, टिकट तो ठीक थे पर सुपर फास्ट के सप्लीमेंट्री टिकट न होने के कारण 220 रुपए पेनल्टी देनी पड़ी। इस तरह से मुफ्त में मिले नेक के 200 रुपए ग्वालियर से आगरा 2 घंटे भी नहीं टिके। भाई ये तो बड़ी ही अचंभत करने वाली बात है कि आपके पास इतनी जल्दी जो भी पैसे ऐसे मिलते हैं वो यूं ही उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पास यदि लाखों रुपए आ जाएं, ये हमने ही

पूछा था कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाए, लाखों तो नहीं कहा था कि जितने आपको मर्जी हो उतने पैसे अगर आ जाएं तो आप क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलिशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखिया आ रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा, जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन बचाना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए, अगर अपने रिश्ते ज्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा, लेकिन जो अपने रिश्ते लोगों की भावनाएं बची वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में, और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए, और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए, और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया, और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज्यादा थे, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज्यादा थे, और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है? ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए, और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को।
1: आंसू और मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उस समय समय समय पर धन का साथ हमेशा दिया है। श्रीमती कॉलेज में प्राध्यापक रह चुकी हैं, हम दोनों को पेंशन मिलती है, मेरा लड़का सीए और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक अंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चूर बन जाएं? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहाँ हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं चाहत है उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है, गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं हूंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव किशोर कुमार की आवाज जैसा किसी की आवाज नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें हमारे साथी बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि हमारे एक रिश्तेदार मुसीबत में थे, रिश्ता ऐसा कि 25 लाख की मदद की, फिर क्या था, समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: बॉबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाए उससे पहले हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान 1:20 को समाचार आते हैं और उस दौरान के गीत और बातें सुनने नहीं मिलती, प्रोग्राम का मजाक किरकिरा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सुन सकते हैं निर्विघ्न ये कार्यक्रम ऐप के जरिए। न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी हैं बिना समाचार के, जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं और पूरा कार्यक्रम एक साथ सुन सकते हैं। तो ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और बड़ा ही आसान है इसे हैंडल करना या इसे चलाना, आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अब आपको तो ये समझना है कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो कौन से फिल्म का गीत है।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

दे दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरी पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देख कर कहा कि इसको बेचकर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर, जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीजें दी थी इन्होंने, और इस तरह से इन्हें

वो मिल गई। और खजाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का खजाना हम तक पहुंचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि 1 घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में स्वर सुरों का आधार है, तो जीवन में स्वर हमारे व्यक्तित्व की

किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है। एक माँ की पुकार में ममता का स्वर होता है, पिता की आवाज में विश्वास और शिक्षक के स्वर में मार्गदर्शन। प्रकृति भी अपने अनगिनत स्वरों में जीवन का संगीत रचती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, बहती नदी की कलकल और वर्षा की रिमझिम, हर ध्वनि अपने भीतर एक अलग अनुभूति समेटे हुए है।

इन स्वरों को सुनने के लिए केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं। सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी। मौन भले ही निशब्द हो, लेकिन उसमें छिपे भावों का स्वर बहुत गहरा होता है। स्वर भावनाओं की भाषा है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन के संगीत की पहली धुन है। जब हमारे शब्दों में संवेदना और स्वर में मिठास होती है, तब साधारण सी बातचीत भी किसी सुंदर कविता की तरह मन में उतर आती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना

0: व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिजोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर

0: सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रख। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में मुसाफिर फिल्म से गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ओपी नैयर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, गीता दत्त, माफ कीजिएगा, ओपी नैयर का संगीत है, कमर जलालाबादी की बोल है, गीता दत्त की आवाज, और ये आपको सुनवा रहे हैं दूसरा एक गीत जिसमें मोहम्मद रफी भी गीता दत्त के साथ, 12 o'clock फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं, आप कुछ कह रही थी।
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन

0: बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया, या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। तो इंतजार है, शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें।
1: जी, और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: बिल्कुल
1: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं, और
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिख कर हमें
0: हाँ,
1: भेजे।
0: वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो, त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियां, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको
1: वो
0: आके
1: बढ़
0: जो ग्रेस
1: जाती।
0: आती है पहनने पर, वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है।

0: खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
1: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है,
0: बिल्कुल।
1: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है, और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है वो
0: जी,
1: सारे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और अभी क्या जरूरी है,
0: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग-अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को

0: ओगो तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य है, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपनी अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं, इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती हैं। और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना,
1: जी
0: हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें, और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयां भी बनती हैं।
1: बिल्कुल। और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है
0: जी
1: कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि
0: जी
1: पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता
0: हम
1: है।
0: कितने समृद्ध हैं ना इस
1: जी
0: प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्री फल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस, इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी, उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
0: और आप गाना सुन ले।
1: चलिए

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं।
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं। और साड़ी के
0: वैसे
1: गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना
0: और
1: सखी? आप
0: फिर
1: भी बताइएगा, चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है, या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको? तो
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई, ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं, क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा

0: साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियाँ बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं हो लगती है, बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है। और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है। तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती हैं। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम, जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं। और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई खास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्योहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कंफर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है, वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल हरा पीला नीला गुलाबी सफेद सफेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं, जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना, वो भी चल रहा है बहुत ज्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत यह है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे ही सोनाली।
0: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं। और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
1: बिल्कुल। अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियां पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकर की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
0: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है, और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सोनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मजे में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60

0: मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक। तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहती कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज उठता हूँ।
1: अब हम वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक।
0: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए हैं, वो चुन रही थी। तो चलिए आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना
1: बिना
0: अक्सर होता
1: देखे
0: है
1: बिल्कुल।
0: ये, ना कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है, इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पर दो चिन्ह होते हैं दीपा। खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है, ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम

0: रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ 2 कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026, इन एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। कितनी ये
1: बिल्कुल,
0: जागरूकता हर किसी को जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा? बच्चे मानते नहीं है, तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ,
1: हाँ
0: उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगिरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगिरा को पूल रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया। पर जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ,
0: बहुत
1: देखिए
0: सही
1: कितना
0: जानकारी।
1: सही जानकारी कि अगर आप व्रत में हैं और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसेचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहती कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर, सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सक्यों याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुन करके हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं। और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी, है ना। भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल। और आपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है, लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है। और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए,
0: ये
1: है
0: मेरे
1: ना।
0: लिए तो नहीं कह रही आप?
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल,
0: बात
1: बहुत
0: लिखी।
1: सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि
0: जी
1: भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं।
0: और इनसे
1: लेकिन
0: दूर ही भागते लोग।
1: हाँ ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है, और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है दो तीन

0: बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
1: या फिर
0: दो।
1: अपने पास रख लेना चाहिए, है ना।
0: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल
1: एक
0: सही कहा
1: साथी कहते
0: सोनल।
1: हैं, प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं, बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है
0: बहुत सुंदर।
1: जी।
0: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
1: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते
0: सुनते
1: रहे।
0: रहें।

0: दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ।
0: जी, हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी

0: नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी, तो इसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप, और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले, और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं, और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पर बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए।
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खूब खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छौंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डालकर भून लीजिए। जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूँ।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया
1: बिल्कुल,
0: और
1: और
0: ऐसा लग रहा
1: इतने
0: था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार,
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहां थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना।
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से।
1: जी।
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया, तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं, बहुत सारे
2: शब्द फूटते हैं, से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है। और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई।
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी।
1: जी जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी हैं। एक दफा,
1: शरद जी नहीं, आपके पतिदेव?
2: जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
1: क्या बात।
2: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है
2: जी। इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी जी।
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो

0: वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं।
1: जी
0: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
1: जी
0: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
1: जी
0: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
1: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
0: जी
1: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
0: जी
1: बताइए
0: बिल्कुल।
1: कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
1: जी
0: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
1: जी जी
0: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
1: जी
0: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो
1: क्या काम
0: हमारे
1: करती थी?
0: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, मेरी श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
1: क्या
0: है।
1: बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी
0: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देवकी नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
1: जी
0: ये पत्रिका हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिका आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
1: जी
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी।
0: हिंदुस्तान
1: जी
0: में, तो
1: बिल्कुल,
0: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वहां से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की कि, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे। तो बस वो एक कच्चा कच्ची, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहां चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहां से शुरू हो गई थी।
1: जी तो वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है, तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से छड़ी से संभाल लिया अपने आप।

0: अच्छा
1: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार को अंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
0: जी
1: और
0: जी
1: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
0: क्या बात है
1: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
0: जी।
1: तो जब यादों को टटोलने लगी अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
0: सही बात है बिल्कुल।
1: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
0: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
1: जी
0: का
1: जी
0: प्रयोग
1: जी
0: होता है,
1: बिल्कुल।
0: तो जन्म से मृत्यु
1: हाँ
0: तक।
1: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
0: जी
1: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
0: क्या बात है,
1: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
0: वाह।
1: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
0: जी
1: अगले चंद माहों के लिए।
0: वाह।
1: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
0: क्या बात है।
1: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
0: वाह क्या बात है, बहुत
1: लकड़ी का
0: बढ़िया
1: पलना ऐसा होता है।
0: जी,
1: जी
0: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते
1: जी
0: हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
0: जी
1: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
0: क्या बात है,
1: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
0: मुस्कुरा
1: जियो।
0: के जियो।
1: जी
0: हमराज
1: जी
0: फिल्म का ये गाना
1: हाँ जी
0: सुनते हैं
1: जी
0: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ही सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक
0: हाँ
1: नहीं लगता लेकिन एक
0: बिल्कुल,
1: आस्था होती है,
0: हाँ
1: इसलिए वो
0: हाँ
1: नज़र बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता है
0: खेतों में
1: और
0: किसान,
1: खेतों
0: कृषक
1: में
0: भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है।
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना,
1: हाँ
0: और सबको ये सीखना चाहिए कि
1: जी
0: बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
1: हाँ,
0: दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
0: जी
1: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
0: क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए, और
1: जी
0: बहुत बढ़िया।
1: धन्यवाद।
0: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को,
1: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
0: कहानी है।
1: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
0: क्या बात है भाई।
1: हाँ जी। माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी, माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
0: वाह क्या बात है
1: जी।
0: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह हैं।
1: जी जी।
0: इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी है, और
1: दरअसल
0: कितनी कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
1: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
0: जी।
1: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
0: जी जी।
1: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है पूरा दीजिए ना।
0: क्या बात है
1: ना, सारा आकाश।
0: हाँ।
1: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
0: जी
1: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल।
0: जी जी।
1: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
0: क्या बात है,
1: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो। मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
0: ओहो।
1: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
0: क्या बात है।
1: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या

0: मेरा कुछ नहीं।
1: जी
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा जा पूरा क्षितिज तेरा। जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी,
1: जी
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।

0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती।
0: कि उनके
1: मेरा जो
0: अपने
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी-कभी सुबह भी होता है। ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
0: बढ़िया
1: कभी-कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते हैं।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम उनके उनके यहाँ मिले। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो येलो फ्रॉक वाली लड़की
0: अरे
1: से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उससे जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए
0: हाँ
1: और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
0: होली के दिन
1: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल।
0: हाँ
1: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
0: हाँ
1: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही है।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया गया।
1: जी
0: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है
1: थी, गौरव
0: बिल्कुल।
1: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके हैं,
0: जी
1: जिसमें सिक्किम के, लेह लद्दाख के, ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की, वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है, मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
0: जी
1: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
0: वाह क्या बात है।
1: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं।

0: चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में दो बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा
0: स्कूबा
1: डाइविंग?
0: डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है, और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग
1: हाँ
0: और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में,
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था?

0: कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
1: जी जी
0: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
1: जी
0: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
1: काकी
0: भाभी,
1: चाची होती
0: चाची,
1: थी।
0: काकी, मामी, बुआ
1: दादी
0: जी, मामी
1: नानी।
0: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडो बनाई ले। मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
1: जी
0: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड वाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और वाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, तो वो क्या थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना,
1: हाँ,
0: तो चूंकि शरद
1: तो
0: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
1: वाह, क्या बात है।
0: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक
1: बिक
0: गए।
1: गए,
0: जी,
1: वाह, क्या बात है।
0: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
1: जी
0: हस्तलिखित या हाथ की चीज की वैल्यू अलग होती है, उसका वो
1: बिल्कुल।
0: अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
0: जी
1: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
0: जी
1: संग्रह है।
0: जी
1: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
1: जी
0: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं, जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है। और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
1: अच्छा।
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: काफी
1: है,
0: समय से लिख
1: वाह।
0: रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन,
1: जी
0: अकेलापन कहाँ। उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए। उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली

0: बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके अंत में एक पंच होता है,
1: जी, बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल, हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
1: जी
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़ छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
1: ओ
0: मतलब देखिए
1: हाँ
0: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फीका।
0: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार देकर के कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ, ऊपर
1: अच्छा
0: से निकल जा भाई, तेरे को
1: हाँ
0: जल्दी
1: जल्दी
0: से।
1: है तो
0: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
1: क्या बात
0: है ना।
1: है
0: तो इस तरह से विषय कब आ जाते, और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी जी
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया।

0: तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
1: जी
0: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
1: वाह
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
1: कविता
0: कविता
1: सुनाना
0: सुनाती
1: चाहते हैं।
0: हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है, दुनिया काठ की किताब से ली है।
1: जी
0: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने, हवा के साथ कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी,
0: जी
1: आपका
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे
1: नमस्कार।
0: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: शाम की ठंडी हवा और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर जैसे दिन भर की थकान चुरा लेती है। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई बिना मांगे सलाह देता है और कोई बस मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। सच्चे दोस्त शायद वही होते हैं जिनके सामने हमें खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ चुप्पी भी बातचीत जैसी लगती है। कभी जीवन की बड़ी समस्याओं का हल किसी बड़ी किताब या भाषण में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर की गई एक सच्ची बातचीत में मिल जाता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों कार्यक्रम में चलिए चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विश्व नारियल दिवस के बारे में। जी हाँ, ये आज के दिन यानी कि 2 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों नारियल हमारे जीवन में केवल एक फल के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति की उपयोगी देन के रूप में मौजूद है। नारियल का पेड़ समुद्र तटों और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में खूब दिखाई देता है। इसके फल से लेकर पत्तियों, रेशों और तेल तक का अलग अलग रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी उपयोगिता और महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें अनेक ऐसी चीजें दी हैं जिसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों नारियल पानी शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है, जबकि नारियल से बनने वाला तेल, दूध और अन्य उत्पाद हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। नारियल के रेशों से रस्सियाँ, चटाइयाँ और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, ये आप भी जानते हैं। यानी एक नारियल का पेड़ अपने लगभग हर हिस्से से किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। यही बात हमें अपने जीवन के लिए भी एक सीख देती है कि किसी चीज की उपयोगिता केवल उसके बाहरी रूप से नहीं तय होती बल्कि उसके सारे स्वभाव से तय होती है। दोस्तों हम नारियल और इससे जुड़े उत्पादों का जरूरत के अनुसार उपयोग करके स्थानीय किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकते हैं। बाजार में प्लास्टिक से बनी कई चीजों के विकल्प के रूप में नारियल के रेशों से बनी वस्तुओं को अपनाना पर्यावरण के लिए एक अच्छा कदम सिद्ध हो सकता है। साथ ही हमें प्रकृति से मिलने वाली चीजों का सम्मान करना और उनका अनावश्यक नुकसान न करना सीखना चाहिए। दोस्तों विश्व नारियल दिवस वास्तव में प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते को समझाने का अवसर है। जैसे नारियल का पेड़ कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है और हमें लगातार कुछ न कुछ देता ही रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उपयोगी, सकारात्मक और जिम्मेदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधनों की बचत करें, स्थानीय उत्पादों को महत्व दें और साथ ही साथ जरूरत के अनुसार चीजों का इस्तेमाल करें। और ये छोटी छोटी आदतें हैं दोस्तों, लेकिन इससे बहुत बड़े बदलाव हम ला सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसीलिए उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
0: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट

0: में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
0: दोस्तों, विकसित भारत 2047 का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सभी का सपना है और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भी है। हम अपनी पढ़ाई और कौशल को मजबूत करके नई तकनीक सीखकर और अपने काम में ईमानदारी और मेहनत लाकर देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल तकनीक और स्वरोजगार को अपनाकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल बचत और सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यों में भागीदारी भी जरूरी है। हमें जिम्मेदार नागरिक बनकर कानून का सम्मान करना चाहिए, मतदान के महत्व को समझना चाहिए और साथ ही साथ समाज में सकारात्मक सोच फैलानी चाहिए। दोस्तों, हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकती हैं। चलिए इसी क्रम में वार्ता सुनते हैं। विषय है विकसित भारत 2047, युवाओं की भूमिका, और वार्ताकार है अंशी सिंह।
2: नमस्कार, मैं अंशी सिंह। आज मैं आपके समक्ष विकसित भारत 2047, युवाओं की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत आज एक ऐसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसके सामने अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब एक विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व में अग्रणी भारत की परिकल्पना की जा रही है। यह केवल सरकारों या नीतियों का लक्ष्य नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश की युवा शक्ति की होगी। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब युवा जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और नवाचारी बनकर राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। दोस्तों, आज का युग तेजी से बदलती तकनीकों, डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीक दुनिया की दिशा तय कर रही है। ऐसे समय में युवाओं को केवल तकनीक के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना है बल्कि ऐसे निर्माता और नव प्रवर्तक भी बनना है। विकसित भारत का अर्थ केवल ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक शहर नहीं है बल्कि ऐसा राष्ट्र है जहां ज्ञान, विज्ञान, नवाचार, मानवीय मूल्यों का संतुलित विकास हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को नई तकनीकों के प्रति जागरूक होकर अपने कौशल को लगातार विकसित करना होगा। वर्तमान समय में स्टार्टअप और उद्यमिता युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। भारत विश्व का एक प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बन चुका है। अनेक युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। विकसित भारत की दिशा में यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि युवा अपनी रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की क्षमता का उपयोग करके नई समस्याओं का समाधान विकसित करें, तो वे न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत का आधार भी यही युवा उद्यमिता है। दोस्तों, शिक्षा किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव होती है। विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है कि युवा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि ज्ञान, कौशल और चरित्र का समन्वय विकसित करें। नई शिक्षा नीति भी इसी दिशा में बहुआयामी शिक्षा, कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर बल देती है। आज के युवाओं को जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति अपना

बनानी होगी, क्योंकि बदलती दुनिया में ज्ञान और कौशल लगातार अपडेट होते रहते हैं। जो युवा सीखने और स्वयं को बदलने के लिए तैयार रहेंगे, वही भविष्य का नेतृत्व करेंगे। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक विकास भी सुनिश्चित हो। समाज में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, नशाखोरी, भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। युवा यदि अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने, सामाजिक जागरूकता फैलाने और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने का प्रयास करे, तो वे समाज अधिक समावेशी और प्रगतिशील बन सकता है। एक जागरूक युवा केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित को भी प्राथमिकता देता है। पर्यावरण संरक्षण भी विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता का क्षरण आज वैश्विक चुनौतियां बन चुकी हैं। यदि विकास पर्यावरणीय संतुलन को नष्ट करके किया जाए, तो यह स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना होगा। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और स्वच्छता जैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। एक हरित और स्वच्छ भारत ही वास्तव में विकसित भारत कहलाएगा। डिजिटल युग में जागरूकता का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया सूचना तक पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध और भ्रामक जानकारी जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। युवाओं को डिजिटल एजुकेशन विकसित करनी होगी और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना होगा। उन्हें किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए तथा तकनीक का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करना चाहिए। डिजिटल जागरूकता विकसित भारत की आधारशिला है। लोकतंत्र की मजबूती में भी युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी तैयार रहेंगे। मतदान, सामाजिक सहभागिता, जनहित के मुद्दों पर जागरूकता और संविधान के मूल्यों का सम्मान एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और जागरूक नागरिकों से भी होता है। स्वास्थ्य और फिटनेस भी राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की देखभाल आवश्यक है। योग, खेल, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच युवाओं को ऊर्जावान और उत्पादक बनाते हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आवश्यक है, क्योंकि तनाव और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मानसिक संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता भी महत्वपूर्ण है। युवाओं को ऐसे समाज बनाने में योगदान देना होगा जहां महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हो। जब समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा, तभी राष्ट्र की प्रगति पूर्ण और संतुलित होगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का संतुलन भी विकसित भारत की पहचान बनेगा। हम युवाओं को अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और मूल्यों पर गर्व होना चाहिए। साथ ही हमें आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वैश्विक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। यही संतुलन भारत को विश्व में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से दूर होना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। रेडियो जैसे जनसंचार माध्यमों की भूमिका भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। रेडियो आज भी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है। युवा यदि रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग सकारात्मक संदेशों, नवाचारों, सामाजिक अभियानों और जनहित के विचारों के प्रसार के लिए करें, तो वे समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। जागरूकता और संवाद
किसी भी विकास

0: यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। अंततः विकसित भारत 2047 केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प की सफलता का सबसे बड़ा आधार देश की युवा शक्ति का है। आज का युवा जितना जागरूक, शिक्षित, अनुशासित, संवेदनशील और नवाचारी होगा, कल का भारत उतना ही विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचाने, अपने कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़े। जब हम युवा ज्ञान को अपनी शक्ति, नवाचार को अपना मार्ग, सेवा को अपना धर्म और राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य बना लेंगे, तब विकसित भारत 2047 का सपना केवल एक कल्पना नहीं रहेगा, बल्कि एक गौरवपूर्ण वास्तविकता बन जाएगा। यही वह समय है जब भारत का युवा केवल भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माता बनकर उभरेगा और विश्व मंच पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था विकसित भारत 2047 युवाओं की भूमिका, और वार्ताकार थी अंशी सिंह।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतनी ही सावधानी की जरूरत भी बढ़ा दी है। घर में बैठे बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, पढ़ाई, टिकट और सोशल मीडिया जैसी सुविधाओं ने समय और मेहनत दोनों बचाए हैं। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी के मोबाइल पर आया फर्जी संदेश, नकली लिंक, झूठा फोन कॉल या सोशल मीडिया पर बनाया गया फर्जी अकाउंट किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए आज के समय में साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सजग रहना और जल्दबाजी से बचना। दोस्तों, कई बार साइबर ठग डर या लालच उत्पन्न करके लोगों से निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे बैंक अधिकारी, कंपनी कर्मचारी या फिर किसी परिचित के नाम पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम बिना सोचे समझे कोई लिंक ना खोलें, अपना पासवर्ड, OTP या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें। कोई व्यक्ति कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, फिर भी ऐसी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, यहाँ धैर्य और संयम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई संदेश देखकर हम घबरा जाएं या किसी ऑफर को देखकर लालच में तुरंत क्लिक कर दें तो गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बजाय हमें कुछ पल रुककर सोचना चाहिए, क्या यह संदेश सच में सही है, क्या इसे आधिकारिक माध्यम से जांचा गया है, और यही छोटा सा ठहराव हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर साइबर सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड रखें, अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें, जरूरी जगहों पर 2-स्तरीय सुरक्षा अपनाएं, मोबाइल और ऐप को अपडेट रखना और अनजान लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए उपयोगी कदम हो सकता है। और बच्चों और परिवार के बुजुर्गों को भी इन सावधानियों के बारे में समझाते रहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। दोस्तों, साइबर सुरक्षा केवल तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार

का भी विषय है। इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके। हर क्लिक से पहले थोड़ा सोचें, हर संदेश पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में शांत रहकर सही जानकारी हासिल करें। डिजिटल दुनिया में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारा ज्ञान, हमारी सतर्कता, धैर्य और हमारा संयम ही है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, कभी किसी बात पर मन दुखी होता है, तो कभी कोई समस्या अचानक सामने आ जाती है। ऐसे समय में हम अक्सर परेशान होकर तुरंत कोई फैसला लेने लगते हैं, लेकिन दोस्तों यही धैर्य और यही संयम हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थिति में भी सोच समझकर सही कदम का चुनाव करें। आज की तेज जिंदगी में हम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हैं। मोबाइल पर संदेश का जवाब तुरंत चाहिए, काम का नतीजा जल्दी चाहिए और सफलता भी जल्द मिल जाए। ऐसी हमारी आदत लगातार बनती ही जा रही है, लेकिन जीवन में हर चीज अपने समय से होती है, यह आप भी जानते हैं। कई बार थोड़ी देर रुकना, परिस्थिति को समझना और फिर निर्णय लेना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, धैर्य और संयम का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से भी है। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो तुरंत गुस्से में जवाब देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहें, रिश्ते को बिगड़ने से आप बचा सकते हैं ऐसा करके। पढ़ाई या काम में असफलता मिले तो खुद को निराश करने के बजाय यह समझना कि गलती आखिर कहाँ हुई आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है हमें। इसी तरह सोशल मीडिया पर कोई उकसाने वाली बात दिखाई दे तो बिना जांचे प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकना भी संयम का ही उदाहरण है। हम अपने जीवन में धैर्य को छोटी छोटी आदतों से अपना सकते हैं। रोज कुछ समय शांत बैठना, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचें, फिर गलतियों से सीखें और लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सही दिशा में लगातार मेहनत करें और परिणाम के लिए उचित समय का इंतजार करना ही सच्चा धैर्य है। दोस्तों, धैर्य और संयम हमें केवल कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद नहीं करते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। ये हमें बेहतर निर्णय लेना, रिश्तों को समझना और परेशानियों में संतुलित रहना सिखाते हैं। जैसे साइबर अपराध से बचने के लिए किसी संदिग्ध संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना जरूरी है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में थोड़ा रुककर, थोड़ा ठहर कर अगर हम सोचते हैं तो हम गलत फैसलों से बच सकते हैं। इसीलिए धैर्य और संयम को आदत बनाएं, क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे सही जवाब वही होता है जो हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांत मन से लेते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम में चलते चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस विचार के साथ, उनका मानना था कि हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है। जी हाँ, यह कथन दर्शाता है कि अटल जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे। उनके लिए हिंदी भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक थी। वे हिंदी को भारतीयता की पहचान मानते थे। इसी विचार के साथ अब अपनी रेडियो साथी रानी राशि को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.7 पर शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल संघ।

गुरु ने हमको राह दिखाई, गुरु ने हमको राह दिखाई, ज्ञान की ज्योति मन में जगाई। गलत कदम

0: जब हमने बढ़ाया, गलत कदम जब हमने बढ़ाया, गुरु ने आकर हमें संभाला। गुरु का हमेशा मान करें, उनकी सीख को जीवन में धारण करें, उनकी सीख को जीवन में धारण करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के बाल संग कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी बबीता दीदी सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाते, बल्कि क्या सही है क्या गलत है ये भी बताते हैं। नहीं तो ऐसे कौन बताएगा हमें कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत राह पे जा रहे हैं हम। आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं वो, आपकी छोटी छोटी गलतियों को बताते हैं। वो आपको पता नहीं होती हैं कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन वो हो रही होती हैं गलतियाँ, तो वो भी वो बताते हैं। और जब वो गलती बताते हैं तब आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग हो जाते हैं कि क्या है, हर समय तो बता कहते हैं ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, गुस्सा आता है ना उस समय। गुस्सा नहीं होना है, वो तो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं कि बड़े होके एक आप अच्छा इंसान बन जाएं। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारे गुरु की, हमारे शिक्षक की। क्योंकि 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये दिन महान शिक्षक, विद्वान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए शिक्षक दिवस पर आप लोग क्या करते हैं? अब तो आने ही वाला है, 5 सितंबर को है, कितने ही दिन बचे हैं, तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, क्या क्या करते हैं? आप लोग से पूछे तो फिर यही कहेंगे कि हम तो अपनी मैडम को, हम अपने सर को खूब बड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं, या चलिए छोटा ही गिफ्ट दे देते हैं, हम तो गिफ्ट देते हैं, या हम कार्ड बना के दे देते हैं, चाहे वो अपने हाथ से बना के दिया, और जो बहुत आलसी होते हैं वो मार्केट से खरीद के दे देते हैं, फूल दे देते हैं, बगीचे से फूल तोड़ा और बुके तैयार किया, मैम को दे आए, उनके पैर छूते हैं, यही सब करेंगे ना, यही सब करते होंगे आप लोग। ठीक है, ये सब करना चाहिए, लेकिन सही तरह से गुरु का सम्मान करना है बच्चों, तो सबसे पहले आप उनका कहना मानिए। क्लास में शिक्षक की बात ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। होमवर्क समय पर करें, हर टीचर से विनम्रता से बात करें, अपने स्कूल को, क्लासरूम को, घर को साफ रखें, क्लास में अनुशासन में रहें, बातें ना करें। जो आप लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं और लगता है चलो अब तो हमें कोई देखेगा ही नहीं, हम तो इतना पीछे बैठे हुए हैं, मैम तो वहाँ तक आ ही नहीं पाएंगी, चलो अब बैठ के हम बातें करते हैं, वो आपका ही नुकसान हो जाएगा। टीचर द्वारा दी गई अच्छी सीख को अपने जीवन में अपनाएं। वो जो आज आपको बातें बता रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। बच्चों, सबसे ज़रूरी अपने शिक्षक की मेहनत को तो समझिए ना। एक टीचर है और कितने सारे क्लास में बच्चे होते हैं, 40-50 बच्चे तो होते ही हैं, सबको एक वो टीचर पढ़ा रहे हैं और वो खड़े रहते हैं, आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से, तो उनकी मेहनत को समझना है। ये सब जब आप करेंगे तो वो सही सम्मान है। बच्चों याद रखिए, गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अब जब शिक्षक दिवस की ही बात हो रही है तो चलिए शिक्षक दिवस पर ही एक हम लोग भेंटवार्ता सुन लेते हैं। गुरु की सीख सफलता की राह। भेंटवार्ताकार हैं शिक्षिका दीपा दास जी और इनसे बातचीत कर रही हैं बबीता पत्रा।
1: शिक्षक वो होते हैं जो अपनी ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इनका हमारे जीवन को सफल

0: बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हमारे साथ हैं शिक्षिका दीपा दास जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस पर ही आपसे हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में एक शिक्षक की क्या भूमिका है।
1: शिक्षक की भूमिका न केवल छात्रों को शिक्षित करने में होती है, बल्कि वे छात्रों को सही और गलत के बीच अंतर को समझाने, अध्ययन के दौरान उनके मार्गदर्शन देने में, संवेदनशील नागरिकों के रूप में उन्हें तैयार करने में और उन्हें वास्तविक जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करने में जिम्मेदार होते हैं। आज के आधुनिक युग में शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न विषयों में शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें जीवन में सफल होने के लिए अन्य कौशल भी सिखाने की आवश्यकता होती है।
0: जी,
1: इसलिए जैसे जैसे समय बदलता है, शिक्षकों की भूमिका भी बदलती रहती है। शिक्षकों को अपने छात्रों के विकास को समझने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना चाहिए। ये उनके लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जो उनको समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करते हैं।
0: बहुत अच्छा आपने कहा कि मतलब पढ़ाई के साथ जो है वो और चीजों भी ध्यान देते हैं आप लोग, या तो जिसमें रुचि है बच्चे को तो उसमें और आगे करते होंगे कि खेल में है तो चलो पढ़ाई के साथ खेल में भी ध्यान दे लें, नृत्य में है, कला में है तो उस क्षेत्र
1: हाँ,
0: में,
1: जिसमें भी उसकी रुचि है
0: हाँ
1: उसमें वो आगे बढ़ता रहे।
0: हाँ हाँ ये सब जिम्मेवारी एक शिक्षक की होती है जो आप लोग निभाते हैं।
1: जी,
0: हाँ, तो एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: देखिए, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का रिश्ता हमेशा सकारात्मक होना चाहिए।
0: जी
1: एक आदर्श शिक्षक ही आदर्श शिक्षा दे सकता है, इसलिए हम शिक्षकों को ही अपने व्यवहार में इस चीज को शामिल करना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जब अच्छा संबंध होगा तो गुरु जो भी सिखाएगा विद्यार्थी अच्छे से सीखेगा
0: जी
1: और अपनी बात शिक्षक से कहने में डरेगा भी नहीं। जहाँ भी शिक्षकों को अनुशासन सिखाना है वे वहाँ उन्हें अनुशासन सिखाएं, लेकिन बिना बात के उन्हें डांटना भी नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में मित्र, अभिभावक व उपदेशक की तरह संबंध रखे, ताकि वह अपने विद्यार्थी को पूरा ध्यान रख सके, उनको हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे सके, वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करने में मदद कर सके।
0: जी
1: बच्चे जितना शिक्षक की भाषा को समझेंगे, वह उनको कितने अच्छे से समझाता व समझता है, उतना ज्यादा ही विद्यार्थी अच्छे से ज्ञान अर्जित कर पाएगा।
0: जी
1: विद्यार्थी और शिक्षक का जितना अच्छा और प्यारा संबंध होगा, शिक्षा प्राप्त करने में स्टूडेंट्स को भी खुशी महसूस होगी और शिक्षक को पढ़ाने में भी आनंद का अनुभव होगा।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है ना। ऐसा रिश्ता हो कि मतलब झिझक ना हो, विद्यार्थी भी अपना शिक्षक से जाके कुछ पूछ सके, नहीं तो बच्चे डरे ही बैठे रहते हैं कि नहीं हमें तो डांट पड़ जाएगी, तो प्रश्न पूछ ही नहीं पाते हैं कि उसका उत्तर क्या है और
1: हाँ,
0: एक डर
1: वो खुल
0: बना
1: ही नहीं
0: रहता है।
1: पाते हैं।
0: जी, खुल नहीं पाते हैं। हाँ, तो रिश्ता मतलब आपस में ऐसा होना चाहिए कि आप पूछ सके, बच्चा बेझिझक आकर के अपनी प्रॉब्लम पूछ सके।
1: हाँ,
0: और दीपा जी, एक शिक्षक का काम बहुत कठिन होता है और आप तो शिक्षिका हैं, देख ही रही हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बच्चों का भविष्य टिका है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं?
1: वो कहते हैं ना, कोई आसान काम करना हो तो जाकर पहाड़ तोड़ते, लेकिन
0: जी
1: हमें तो शिक्षक बनना था।
0: हाँ
1: कि एक शिक्षक का काम बहुत कठिन होता है,
0: जी
1: क्योंकि हम शिक्षकों पर ही बच्चों का भविष्य टिका है। और बात रही हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, तो इस पर मैं कहना चाहूंगी कि एक शिक्षक बनना आसान है, लेकिन एक जिम्मेदार शिक्षक बनना बेहद मुश्किल।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये बच्चे मोतियों की तरह होते हैं, लेकिन उन मोतियों की माला बनाने के लिए इनको तैयार करना हमारी जिम्मेदारी होती है। शिक्षा देने से हमारा कार्यभार खत्म नहीं हो जाता। हमें उन बच्चों के अंदर अच्छा आचार विचार, ज्ञान, उदारता, धैर्य, व्यवहारिकता से लेकर के सहयोग तक की भावना को विकास करना होता है।
0: जी,
1: और बात आई जिम्मेदारी की, तो आज हर नागरिक अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस हमने भी ठान लिया कि हम अपने देश के भविष्य इन बच्चों को इस काबिल बना दें, कि हमारे देश की

0: परचम पूरी दुनिया में लहरा सके। तो बस इस तरह अपने देश को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षक अपना कार्य करते हैं और इस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए कि आज के समय में शिक्षक दिवस को किस तरह मनाया जाता है।
0: देखा जाए तो देखिए, हमारे भारत में हम इसे 5 सितंबर को मनाते हैं।
1: जी
0: शिक्षकों को समर्पित यह दिन खास तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था।
1: जी
0: क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत साल एक शिक्षक के रूप में देश को समर्पित किए थे। शिक्षक दिवस के दिन देश भर में स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेकर के कोचिंग सेंटर आदि में भी डॉक्टर राधाकृष्ण को श्रद्धांजलि देकर
1: हाँ
0: शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों को बधाई संदेश, कार्ड, गिफ्ट देकर उनकी सराहना और आभार प्रकट करते हैं। इस दिन छात्र अपनी कला और संदेश के माध्यम से शिक्षकों के प्रति अपनी भावनाएं जताते हैं। अब तो कई सीनियर छात्र छात्राएं स्कूलों में खुद शिक्षक बनकर बड़े चाव से उनकी भूमिका निभाते हैं,
1: हाँ
0: या कह
1: हाँ
0: लीजिए कि हाँ मतलब उनकी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। साथ
1: हाँ
0: ही वे उन गुरुओं को भी याद करते हैं जो स्कूल अब तक छोड़ चुके होते हैं।
1: जी हाँ तो बच्चों को भी कितना अच्छा मौका मिल जाता है भाई अपनी प्रतिभा दिखाने का, और उस दिन
0: जी
1: सब माफ भी होता है। चलो भाई ठीक है,
0: हाँ, उस दिन सब कुछ माफ होता है।
1: टीचर की एक्टिंग कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं।
0: हाँ, उस दिन हमें पता चलता है कि जो छात्र छात्राएं हैं हमें कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं।
1: हाँ सही कह रही है बिल्कुल। और मेरा अगला प्रश्न ये है दीपा जी आपसे कि
0: जी
1: जब एक विद्यार्थी हाई पोस्ट पर पहुंच जाए, जैसे पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बन जाए, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को?
0: ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है।
1: जी
0: जब हमारा कोई विद्यार्थी हाई पोस्ट पर पहुंच जाए तो हम शिक्षकों के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता।
1: बिल्कुल
0: अपने छात्रों की सफलता में अपनी भूमिका को देखकर उन पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। अपने प्रयासों और समर्पण की वजह से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव को देखकर खुशी होती है व आत्मसंतुष्टि मिलती है। अपने छात्रों की सफलता को देखकर वह उससे उत्साहित होकर और अधिक छात्रों को प्रेरित करने की इच्छा महसूस होती है, और यह अनुभूति मुझे अधिक प्रेरित और ऊर्जावान बनाती है।
1: जी
0: इन्हीं भावनाओं से मुझे ये महसूस होता है कि कोई भी शिक्षक अपने छात्र की सफलता में कितना भावनात्मक तरीके से निवेश करता है और उनकी उपलब्धियों से कितना प्रसन्न होता है।
1: जी सही में कितना अच्छा लगता होगा, कितना खुशी महसूस होती होगी। अच्छा हमने इसको शिक्षा दी है तो आज ये इस पोस्ट पे है।
0: जी,
1: और ये बताइए कि बच्चों और अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगी दीपा जी?
0: इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी।
1: बिल्कुल
0: जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। सर्वप्रथम आपके इस कार्यक्रम से मैं सभी बच्चों और अभिभावकों को अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। किसी
1: जी
0: भी क्षेत्र में एक इंसान की सफलता के पीछे उसके शिक्षक का हाथ होता है। आज हर जगह बड़े बड़े पदशाली लोग की सफलता के पीछे उनके शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। शिक्षक एक विचार देता है, इसके बाद विद्यार्थी में जितना श्रद्धा है उतना सीखता है। मैं सभी बच्चों और अभिभावकों को यही कहना चाहूंगी कि शिक्षक एक सीख है, और सीख उसी के हृदय में प्रवेश करती है जिसके हृदय में अपने शिक्षक के प्रति समर्पण होता है।
1: जी
0: इसके साथ मैं कहूंगी कि हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पित रहे। अपनी संतान के लिए खुला आसमान होती है, करुणा और प्रेम में पूरा जहां होती है। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करें, क्योंकि जीवन में पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है।
1: बिल्कुल
0: अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा शिक्षक होता है, क्योंकि जितना उसने एकाग्रता से सीखा है उसी के आधार पर वह दूसरों को भी चीजें सिखा सकता है।
1: और ये अंतिम प्रश्न है, शिक्षक दिवस का महत्व क्या है?
0: जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास जा पहुंचे, जिस पर उन्होंने छात्रों से समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को बताने

0: के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। शिक्षक दिवस का दिन अपने टीचरों के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने का दिन है, क्योंकि यह शिक्षक ही हमारे जीवन अज्ञानता के अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं।
1: जी,
0: वे हमारी गलतियां बताते हैं, वह हमें जीवन के हर नए मोड़ पर आने वाली सभी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की तरह हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, इसलिए ये दिन बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इस दिन अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित करते हैं। इसलिए दुनिया भर के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस पर मैं एक कविता बोलना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदा बहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियां खूब मनाता शिक्षक, देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाता शिक्षक, प्रकाश पुंज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाता शिक्षक, प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाता शिक्षक, नैया पार लगाता शिक्षक।
1: वाह, बहुत अच्छी आपने सुनाई अंत में कविता। और आज दीपा दास जी से शिक्षक दिवस पर हमारी बातचीत हुई, बच्चों को बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बच्चों, अभी आप लोग शिक्षक दिवस पर ही एक विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे, गुरु की सीख सफलता की राह। भेंट वार्ताकार थी शिक्षिका दीपा दास जी, और इनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा। तो इस भेंट वार्ता के बाद चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
6: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
7: हेलो,
5: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
6: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
5: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
6: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
5: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: एक बार फिर से सभी बच्चों का बाल संघ कार्यक्रम में स्वागत है, और मैं आपकी बबीता दीदी। बच्चों, अब जान लेते हैं उन महान व्यक्तित्व के बारे में जिनका जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जन्म इनका 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था। बच्चों, वो एक महान शिक्षक थे, दार्शनिक, लेखक और विद्वान थे। शिक्षा के प्रति तो बहुत ही लगाव था, बचपन से ही, मतलब बहुत लगाव था उनको। उन्हें पढ़ने और नई बातें सीखने में बहुत रुचि थी। भाई, किताब खोलो, पढ़ तो सभी लेते हैं, और आगे का सीखते थे, नई नई बातें उनको जानने का मन करता था। अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त, तभी आगे चलकर प्रसिद्ध शिक्षक बने। राधा कृष्णन जी बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, कि जैसे वही कहा ना, किताब खोली और पढ़ ली, याद कर लिया, एग्जाम दे आए, हम पास हो गए। नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, प्रश्न पूछने और अपने विचार विकसित करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका ये कहना था, सोचिए और फिर उसको पूछिए, बड़ों से उसको जानिए, अपने विचार विकसित करिए। उनका ये मानना था कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना,

वो बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानता है और उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। टीचर लोग, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, टीचर लोग पहचानते हैं, वो आपको बहुत वॉच करते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा हूँ, टीचर समझ जाएंगे कि इसकी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये तो कला के क्षेत्र में जा सकता है, या इसका गणित बहुत अच्छा है तो चलो ये साइंस में जा सकता है। अब पता चला कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, वो बस अपना गा रहा है, उसको कोई वो ही नहीं। टीचर पहचानता है छिपी हुई प्रतिभा को, वो पहचानते हैं, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। एक सीख ये भी थी उनकी कि केवल एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना बहुत नहीं है, वो तो ले आते हैं बच्चे, उन्हें याद कर लिया, रट लिया और घर में भी सुना दिया, खूब बार लिख लिया, एग्जाम में दे आए, 100 में से 100 भी आ गए, 10 में से 10 भी आ गए। तो अच्छे नंबर लाना काफी नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी साथ में जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये चाहते थे कि भारत के युवा अपनी संस्कृति को समझें, अपनी परंपराओं को समझें, लेकिन साथ ही आधुनिक ज्ञान और वैज्ञानिक सोच को भी अपनाएं। और बच्चों जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों आप भी गुरुओं का सम्मान करिए, अच्छे कर्मों से नाम करिए।

बच्चों चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसे फल की। अब पढ़ाई लिखाई हो गई ना, तो थोड़ा सा खाने पीने की बातें हो जाएं, थक भी तो जाते हैं आप लोग, तो चलिए अब थोड़ा खाने पीने की बात करते हैं और एक फल की बात करते हैं जो ऊपर से बहुत सख्त दिखाई देता है, मतलब बड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसके अंदर मीठा पानी होता है जो आप लोग पीते हैं, और स्वादिष्ट गिरी होती है जो आप लोग खाते हैं। बच्चे समझ गए होंगे कि दीदी तो इस समय नारियल की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं, मैं नारियल की ही बात कर रही हूँ। आप जानते हैं ना बच्चों, नारियल के महत्व को समझाने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। बच्चों कभी नारियल का पेड़ देखा है? घूमने गए होंगे तो देखा होगा, बहुत ऊंचा होता है, इसकी लंबी पत्तियां ऊपर की ओर फैली रहती हैं। नारियल का फल इन्हीं पत्तियों के नीचे गुच्छों में दिखाई देते हैं। बच्चों नारियल को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका लगभग हर हिस्सा किसी ना किसी काम आता है, इसीलिए बहुत खास होता है। जैसे नारियल के रेशों से रस्सी बनती है, चटाई बनती है, और बहुत सी काम की चीजें बनती हैं। नारियल के खोल को भी कई तरह से यूज करते हैं, खाया भी जाता है और नारियल पानी पिया भी जाता है, बहुत ताकतवर भी होता है। आप लोगों को भी कभी कमजोरी लगती होगी तो घर में ला देते होंगे ना नारियल पानी की, नारियल पानी पी लो, और नारियल का तेल वो तो सभी लोग यूज करते हैं, तो मिला जुला कर ये बहुउपयोगी फल है नारियल। तो बच्चों अब चलिए बातों को थोड़ा ब्रेक दे लेते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कितनी अच्छी प्रार्थना थी। और इसी के साथ लेकिन अब बाल संघ कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। जाने से पहले यही कहूंगी, बच्चों हर दिन एक अच्छी आदत अपना लीजिए। जैसे आज यही अपना लीजिए कि मैं रात में टाइम से सोऊंगा, कल कर लीजिए कि सुबह जल्दी उठूंगा। अच्छी आदतें हैं ना ये। उसके बाद होमवर्क ज़रूर पूरा करूंगा, एक ये आदत है। बस ऐसे ही रोज एक एक आदत को अपनाते जाइए। लेकिन हाँ, उस आदत को छोड़ना नहीं है कि आज तो चलिए ये कर लिया, कल से फिर अपनी दूसरी आदत अच्छी अपना ली, पहली वाली भूल गए। ये नहीं करना है, रोज जो आदत अपनानी है उसको करना है। फिर चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और दीजिए बबीता दीदी को विदा। बच्चों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संग एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोगों के स्वदेशी सामानन के अपनौले, सोना का अनावश्यक खरीद आ विदेशन में शादी ब्याह समारोह आयोजित कैले से बचले क आह्वान कैले हमें। एगो वीडियो संदेशा में श्री मोदी कहले कि देश के नौजवान आज जवन कड़ेर मेहनत कई रहल हमें ओसे उनकर सपना साकार हुई।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम UPCOS का शुभारंभ कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि संवेदनशीलता सुशासन का पहला शर्त हो आ यही नाते प्रदेश सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कैले हवे। वहां के कहने के करे जरिया से आउटसोर्स कर्मियन के एगो संस्थागत सुरक्षित भविष्य मिली।
2: अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हम इस बात को मानते हैं कि अधिकार अब किसी व्यक्ति की कृपा पर नहीं मिलेंगे बल्कि आपकी मेहनत पे प्राप्त। व्यवस्था अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेगी और जानकारी अस्पष्ट नहीं होगी, यानी पूरी जानकारी का एक पोर्टल उपलब्ध होगा, कोई भी कर्मचारी जानना चाहेगा उस पर उपलब्ध होगा और मैं मानता हूं इसमें हमारा कर्मचारी अब अकेला नहीं होगा, आपके पास आउटसोर्स सेवा निगम आपके साथ होगा।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ ब्रजेश पाठ को शामिल भेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान के कार्ययोजना के लेके एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। ये अभियान प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ले चलावल जाये।
3: अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने की कोशिश होगी। अभियान की कार्य योजना को लेकर कल आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा संकल्प अभियान को जन भागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर समन्वय की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम से किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश भर में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, नदी घाटों, मंदिरों, पार्कों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में भी विशेष दीप प्रज्वलन कराया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: रुक रुक के हो रहल बरखा बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश भर का करीब 1.5 दर्जन से बेसी जिला बाढ़ से प्रभावित हवें। सत ही कई गो औरियो जिलन में ओजा के प्रमुख नदी उफान पर हैं। वाराणसी जिला में गंगा नदी के जलस्तर 2 सेंटीमीटर हर घंटा के रफ्तार से बढ़ रहा हो। अम्बेडकर नगर जिला में सरजू नदी का जलस्तरों में 1 सेंटीमीटर हर घंटा के रफ्तार से बढ़ोतरी हो रहा बा। एह बीचे चित्रकूट जिला के बाढ़ प्रभावित इलाकन में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हो। ओजा मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकन में फसल दुकानदारन आ ओजा के लोगिन के NDRF टीम के मदद से सुरक्षित निकाल जा रहल बा।
4: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहने से लेके 7 सितंबर ले कहीं कहीं भारी बरखा का येलो अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक अजू यही इलाकन में कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी बरखा भइले के संभावना बनल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कानून की बात। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत हम और हमारा स्वास्थ्य। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। श्रोताओं ग्राम जगत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा सबरस।

0: व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू कुमार पुत्र दरोगा सिंह निवासी ग्राम दुमहान पोस्ट रचखड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 19 मार्च 2015 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 14 वर्ष लंबाई 4 फीट हुलिया गेहुआ रंग गोल चेहरा इखरा बदन और मंद बुद्धि है। पहनावा है खाकी पैंट और नीला शर्ट। श्रोताओं एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अरविंद कुमार शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी बजरंग नगर सुभाष पेट्रोल टंकी के पीछे थाना ओबरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 29 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 34 वर्ष लंबाई 5 फीट 5 इंच हुलिया लंबा चेहरा माथा चौड़ा गोरा रंग माथे पर कटे का निशान पहनावा है काले रंग का टी शर्ट और सफेद जीन्स पैंट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो
1: फिर क्या, फोन उठाइए वॉल्यूम बढ़ाइए
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश योर म्यूजिक योर स्टाइल
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

102.1 मिलो सात पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: बोला भैया आपके भी राम राम।
0: राम राम बतासा बहन।
1: और देखें मौसम जोन बाना कि कभी घाम कभी बदरी कभी बरखा कभी झीसी कभी खूब झमाझम बारिश,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये
0: है।
1: वजह से थोड़ा सा देखें जोन भी जीव जंतु हवा आदमी मनई हवा उन पे असर हो ही जात बा।
0: बिल्कुल वही बतासा भी भीगे के वजन बा कि ज्यादा
1: तो बोला भैया देखे जब सब प्रभावित हो रहल बा तो बतासा कैसे बच जाए, और
0: बिल्कुल
1: बतासा भी
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: बिल्कुल
1: सा नरम गरम हो ही गई है बरखा बुन्नी से।
0: तो यही में बच बचा के रहे के हा, थोड़ा
1: बिल्कुल
0: पानी
1: सावधानी रखा
0: पानी
1: जरूरी
0: गुनगुना
1: बा।
0: लेवत रहे के हा सबके,
1: वो
0: ताकि
1: कहल
0: जो
1: जाला ना
0: बाकी
1: भैया कि दूध से मुंह जरेला तो लोग मंठा भी फूक के पिएला,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जब देखें जब मौसम के असर हो जाला तो भाई तब आदमी गुनगुन करके पानी पिएला काढ़ा बना के पिएला तो उसे थोड़ा सा राहत मिलेला, गरम चीज चाय बना के पिएला। अगर
0: बिल्कुल
1: पहले ही
0: बिल्कुल
1: आदमी ऐसे
0: बिल्कुल
1: ही करे तो फिर बीमारी आवे तो पता कहाँ चलत कि बीमारी आवत है कि स्वस्थ आदमी।
0: बिल्कुल। तो यही से तो जोन बाकी पहले चेते खोला, लेकिन हमने
1: हाँ
0: के तो निश्चित रूप से ये समय जोन मौसम दिखाई दे रहा है ये में नदी तालाब जोन हो इसमें एकदम बिल्कुल अपने युवा अवस्था में हम, तो ये से जोन बाकी ओके बगल बगल करके बच के रहने की जरूरत है। जौन सोन के आसपास वाला क्षेत्र है
1: बिल्कुल
0: और चाहे रेणुका से लगायत इधर ओबरा डैम से लगायत सोन बिजुल जौन भी हों, ये सब बहुत जौन उफान पर बा,
1: भैया
0: ऐसे
1: देखा
0: जौन बा कि बच बचा के

0: लोग कह रहे हैं कि हाँ
1: बिल्कुल सही बात कर रहा है कि देखा कहीं बरखा बुन्नी झीसी के रूप में हो रहा बा, तो कहीं झमाझम बरस रहा बा, तो ये जौन भी पानी बरसा था तो भाई नदी नाला में धीरे धीरे बह के जाता तो ऊपर ज्यादा उफान में आ जाता पानी, तो आसपास के जौन भी अपन गाँव पशु चौवा हवन तो उनके संरक्षित कैल और बचावल अपन खुद के जिम्मेदारी बा परिवार की। और इसे तो देखा अपन रेडियो समय समय पर जब भी चाहे खुशी की बात हो चाहे दुख का चाहे प्राकृतिक आपदा का हर परिस्थिति में हर समय में हम लोगन के सजग और सचेत करत रहेला, तो हम लोगन के सचेत रहल सबसे ज्यादा जरूरी बा। और ओकरे साथ साथ देखे हम लोगन के अन्नदाता के रूप में भी जोड़ल जाएला, अपने बड़ा गौरवान्वित महसूस होला भोला भैया कि कहल जाला कि एगो भगवान और एगो किसान, किसान के भी भगवान के ही दर्जा के रूप में दिल है कि हम लोगन देखा अपने आप के हम ही तो ना कहते हैं लेकिन बाकी जौन भी अपन किसान भैया बहन लोगन हुआ देखा वो अन्न उपजावे ले और अपने अन्न से देश दुनिया के पेट भरे ला।
0: बिल्कुल मूल आधार तो जनबा की अन्न और जल है
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद जनबा की वस्त्र के बात आवला
1: बिल्कुल,
0: चाहे जितना भी जीवधारी होला चाहे वो जनबा की वस्त्र के धारण करत हो चाहे ना, लेकिन अन्न जल जरूर ले
1: बिल्कुल कहा जा रहा भैया की कितनों रुपया पैसा कमाई पेटवा में भर पाई,
0: तो ऐसे जौन बाकी जौन अन्नदाता हुआ निश्चित रूप से भगवान से भी बढ़कर के हुआ, बाद में भगवान की जानकारी आदमी ले पाला और यही से जौन बाकी प्रधानमंत्री के अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जौन है वो विषय पर भी आदमी चर्चा करत रहला कि जौन बाकी ऐसे का हम लोग के लाभ है, तो किसान के उनकर उपज के उचित समर्थन मूल्य मिल सके और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा प्रदान हो सके, ये सरकारी योजना चल है। एकर मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान के उनके फसल के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर सकला।
1: बिल्कुल भैया जो योजना के बात कर रहा तो देखा सितंबर में 2018 में ही शुरू कर गई रहा लेकिन केंद्रीय क्षेत्र का छत्र योजना है और एक मुख्य उद्देश्य जैसा की आप कहला है की मूल सुरक्षा के मने किसान के फसल कटाई के बाद मजबूरी में जो अपन फसल बेचे से बचावेला वो देखा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाला तो एक ऐसे करीके उद्देश्य
0: नुकसान होला उसे बचावे खातिर जोन बाकी
1: बिल्कुल। और फसल विविधीकरण जैसे कि दलहन है तिलहन है और खोपरा का और मतलब स्थानांतरित खेती के प्रोत्साहित करेला और उपभोक्ता स्थिरता मने की आवश्यक कृषि बागवानी वस्तुअन के खातिर के किफायती बाजार मूल्य के बनाए रखे में भी मदद करेला
0: बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ समय जोन बाकी हम लोग धान की रोपनी भी करी लेल बाद में और ऐसे अब जोन बाकी इतना अच्छा इस समय धान लहलहा रहा हुआ लेकिन वो में और का कुछ जोन बाकी हम लोग के प्रबंधन करे के हो कीट से कैसे बचाव हम लोग करी इस सब विषय पर बातचीत करे खाते जोन बाकी आज हेलो किसान के रूप में फोन इन कार्यक्रम जोन कल गिल है तो ये भी शामिल कल गिल है कि धान के फसल में कीट रोग प्रबंधन हम के प्रकार कर सकेला और ये पर का कुछ हम ध्यान दें ये विषय पे बातचीत करे खातिर संतोष कुमार कुशवाहा जवन सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से हवन इनसे बात बात कही हुई बा मुनई भैया के
1: मने मुनी भैया अपन सहयोग प्रदान कर ले हो इनके माध्यम से अपन किसान भैया लोग अपन समस्या के जानकारी इनसे पावत हो तो देरी कोने बात के भोला भैया हम तो कहते कि फोन इन कार्यक्रम जो कार्यक्रम बहुत शुरुआत हो के हम लोग अपन सुनल और गुनल जो जगह जो समस्या बा देखल जाए कहाँ से केकर फोन आ रहा बा केकर बात
0: सुनल जाए।
2: किसान भाई लोग देखें हम लोग अपने पंचायती में प्रत्येक बुधवार के हेलो किसान लेकर आईला हेलो किसान के माध्यम से जौन भी अपन पंच भैया लोग खेती बारी से जुड़ल हो खेती बारी करत हो उनकर जौन समस्या बा ओकर समाधान करावे का प्रयास करीला विशेषज्ञ भैया लोगन के माध्यम से हम लोगन तो देखें आज जौन हमार संपर्क बा वो हो गल बा संतोष कुशवाहा जी से जौन की एडीओ एजी आप राजगढ़ में हो और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि धान के फसलन में कीट रोग प्रबंधन हम लोगन कौने प्रकार से कह सकीला त आज संतोष भैया से हम लोगन का संपर्क हुई और पंच भाई लोग किसान भैया लोग जौन भी आप लोगन का समस्या हुई आप लोगन फोन करी हैं तो फोन के माध्यम से अपन प्रश्न पूछी हैं तो जौन भी समस्या बा ओकर समाधान हुई। संतोष जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर। नमस्कार
2: संतोष भैया आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखा ये समय जौन हम लोगन का फसल बा खास तौर से धान का फसल वो खेत में बा कहे से कि अपने अंचल सोनभद्र में बहुत बड़े

0: पैमाने पर धान का खेती होलै और ए साल कुछ पानी लेट बरसल, ऐसे अपन किसान भैया लोग कुछ तो अगही धान का खेती कर दिलेन, लेकिन कुछ बहुत पीछे तक रोपाई कैलेन है धान का। तो आज हम लोग आपसे जानब अपन पंच भैया लोग जनिए कि कैसे हम लोग अपने धान में जवन भी कीट रोग अगर आवता तो ओकर प्रबंधन करी। तो पहले हम आपसे ये जानल चाहब संतोष भैया कि जौन अपन किसान भाई लोग थोड़ा पीछे धान का रोपाई कैले बा तो वो सबसे पहले अपने धान में कौन कौन सामयिक कार्य करें।
1: जी सभी पंचों को राम राम। जैसा कि धान की फसल इस साल कम बारिश या लेट बारिश के चलते इस साल लेट हुए हैं किसान, जिसमें किसानों को विशेष तौर से ध्यान देना रहेगा कि जैसे भी हम लोग धान की रोपाई इस समय तक हम देख रहे हैं कि रास्ते में हम लोग आते जाते फील्ड में या घर आते जाते देख रहे, अभी तक भी लोग धान लगा रहे हैं।
0: जी, जी, जी।
1: तो धान लगाने का मतलब है जी कि अभी तक लगा दे रहे हैं वो तो ठीक है, लगा देंगे उसमें हम उत्पादन जहाँ तक है लगभग ठीक ठाक हो जाएगा, सब हम सिचुएशन उसको बरकरार रखेंगे, उसको देख रेख करते रहेंगे तो हमारा फसल अच्छा हो जाएगा। जो भी किसान भाई जैसे अभी फसल लगा रहे हैं और कुछ लोगों का फसल लगभग 30 दिन का हो गया है, दो सिचुएशन इस साल बन गया है किसानों के बीच में। जहाँ पे पानी का साधन था वहाँ पे पहले कर दिए जो कि लगभग 25 से 30 दिन का हो गया, और जहाँ पे लेट हो रहा है अभी तक लोग अब लास्ट लगभग चल रहा है और रोप दिए 10 दिन पहले या तो अभी रोप रहे हैं या रोपाई हो गई। उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि जहाँ रोपाई हो रही है अभी भी वहाँ पे जैसे ही खेत नर्सरी से निकाल करके हम अगर रोपाई कर रहे हैं, अगर अभी कोई एक आध दो दिन और रोपने के लिए किसी के पास रह गया है तो जो नर्सरी है सबसे पहले नर्सरी जो ऊपर का जो मतलब उसका पत्ता है जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ है अगर वह ज्यादा हो गया है तो उसको निसंकोच ऊपर से लगभग 25-30 सेंटीमीटर मतलब लगभग एक बीता आप एकदम उसको नीचे का जो ग्रोथ जहां से करता है उसके ऊपर से जरूर उसका काट दें या तोड़ दें, या जैसे हम लोग प्याज लगाते हैं तो ऊपर का कली काट देते हैं,
0: ऊपर वाला भाग
1: ऊपर का पत्ता काट देते हैं, उसी तरह से उसको काटते हैं। इसका फायदा एक मिलेगा जी कि जो हम अगर लगा रहे हैं खेत में तो नीचे जमीन में जाकर के वह सड़ने टाइप में नहीं होगा या सड़ाएगा नहीं या उससे जो कीट रोग नहीं पैदा होंगे, तो इसके लिए हमको उसको काट करके उसको लगाना है। और लगाने के बाद उसमें हमको हर्बिसाइड का स्प्रे जरूर कर लें, जैसे कि खरपतवार नाशी अगर नहीं डालेंगे तो उसमें घास फूस ज्यादा निकलेंगे और आपका जो है जो वेजिटेटिव ग्रोथ है पौधे का वह न हो करके आपके घास फूस ज्यादा निकलेंगे और उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं चल के दिखेगा जी कि हमारा पौधा विकास नहीं कर रहा है।
0: संतोष भैया देखें एक फोन आए गल बा। हेलो।
2: हाँ भैया नमस्कार।
0: हाँ भैया नमस्कार।
2: इंद्रासन सिंह मौर्य ग्राम सुंदरी से बोला था घोरावल से।
0: इंद्रासन भैया आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा, आप अपन नियमित श्रोता हवा। इंद्रासन भैया देखें आज हम लोगों के साथ संतोष कुशवाहा भैया हवा जो उनकी एडीओ एजी राजगढ़ में आप हवा। आज धान के फसलन में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बातचीत होता, तो अपन प्रश्न करें संतोष भैया से।
2: हाँ सर नमस्कार
1: जी। नमस्ते नमस्ते जी भैया नमस्ते। बताएं
2: सर ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बारिश भी हम लोग क्या हो रही है और धान की जो फसल लगी हुई है उसमें हमेशा पानी लगा हुआ है, तो मतलब धान के फसल में जो है ना एक खैरा रोग जैसा पत्ते सड़ने की शिकायत आ रही है, खास करके जैसे अमन है या मंसूरी है इसमें ज्यादा आ रही है, हाईब्रिड में तो नहीं आ रही है लेकिन
1: लगभग अभी कितना दिन का पौधा रोपाई के हो गए हैं?
2: पौधा रोपाई लगभग अभी तो ज्यादा हुआ नहीं है, लगभग वही एक महीने 5-6 दिन के आसपास हुई।
1: लगभग 30-35 दिन का आपका पौधा हुआ है और जो घोरावल बेल्ट है लगभग उसमें इस बार बारिश थोड़ा सा अच्छा खासा हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, ज्यादा हुआ है तो इस समय, तो उसमें तो पहले यही होगा जी कि अगर पानी लगा होगा खेत में तो पानी एक निश्चित जो उसका लिमिट है, जो कि लगभग 2-3 इंच तक उसमें नीचे पानी लगे रहे, उतना आप उसको रखे के बाकी अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है कहीं, अगर आप तालाब पोखरा कहीं अगर जा रहा है तो उधर जाने के लिए निकाल दें। और उसमें जब भी अगर थोड़ा सा मतलब पानी जब थोड़ा 1-2 इंची बचे, मतलब चलने में लगे

0: पानी चल रहा है, हिल रहा है, उस कंडीशन में आप यूरिया के साथ जिंक का को छिड़काव कर दें तो आपको उसका बेहतर लाभ मिल जाएगा, और पानी कम रहे और खेत बधा रहे, जो जिंक की कमी है वो जिंक की कमी पूरा भी हो जाएगा और आपका उसमें ग्रोथ भी अच्छा होने लगेगा।
1: जी जी जी जी
2: इंद्रासन भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कैले और आपका जो प्रश्न रहला ओकर उचित समाधान भयल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया जौन
0: जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि खर पतवार नाशी का जरूर प्रयोग कर लें जो लोग लगाए हुए हैं लेट में, और जो पहले से लगाए हैं वो हम लोग लगभग 25 से 30 दिन का पौधा जो हो गया है उसमें हम लोग ये कर लेंगे जी कि फिप्रोनिल एक दवा आती है जो कहीं कहीं देखेंगे जब हम धान लगाते हैं तो उसमें दीमक और ग्रब टाइप में लगता है, तो जो भी हम अभी 25 से 30 दिन का हुआ हो या 10 से 15 दिन का हुआ हो या एक हफ्ते हुए हैं, जब हम पहली खाद जब डालने लगेंगे उस कंडीशन में हम फिप्रोनिल एक दवा आती है जो रिजेंट के नाम से हम लोग मार्केट में जानते हैं या जो गाँव देहात में लोग जानते हैं, वो जो लाल लाल कलर का होता है जब हम छिड़कते हैं तो लाल लाल हो जाता है, लोग इस नाम से भी जानते हैं या कलर से भी पहचानते हैं कि वो वाला कीड़ा वाला दवा पड़ गया, तो उस कंडीशन में हमको जो है उसमें दवा फिप्रोनिल का 30 से 35 दिन के अंदर ही डाल देना है। अच्छा। इससे क्या होगा कि जो नीचे वाला ग्रब है या फिर दीमक है ये दोनों नष्ट हो जाएगा, साथ ही साथ वो पौधा के साथ घुला मिला रहेगा तो जो उसमें पौधे में थोड़ा बहुत जो विष का असर उसका केमिकल का रहेगा उसमें आपका कुछ हद तक जो पत्ती लपेट का जो आएगी समस्या वो भी जो है नहीं आने देगा और आपको पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होता रहेगा, जो हम लोग लास्ट में लगा रहे हैं या लगा रहे अभी लिए हैं अभी तक तो वो हमारा कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर लाभ मिलेगा। जहाँ पे एक महीना का हो गया है पौधा, हम लोग खेत के मेड़ से जब हम लोग घूमते हैं तो हम लोग सब चीज नहीं देख पाते हैं उसमें, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग खेत के मेड़ से लगभग कुछ अंदर घुसे, जब भी आप अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कि उसमें पत्ती पाइप नुमा, जैसे पाइप जो हम लोग हस्ती की पाइप होती है जो भी पाइप आप सिलेंडर टाइप में कह सकते हैं पाइप होता है, उस तरह से पत्ती दिखने लगता है, जब पत्ती दिखने लगे कि कहीं पाइप टाइप में दिख रहा है उस तरह से हमको जो है तुरंत ही देख लेना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कीट लग गया है, तो उस कीट को हम लोग पत्ता लपेट कहते हैं।
2: संतोष भैया एक फोन आएगा बा, हेलो
3: हेलो, हाँ सर,
2: हाँ भैया, हाँ हाँ प्रणाम भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलो थो भैया?
3: हाँ सर, केतवा से बोल रहे हैं सर, राजेंद्र प्रसाद,
2: राजेंद्र
3: प्रसाद केतवा से बोल रहे हैं।
2: राजेंद्र भैया आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा, देखें आज हम लोगन के साथ संतोष कुशवाहा भैया जुड़ल हुआ जो उनकी एडीओ एजी राजगढ़ में हुआ, आप आपका कौनो खेती किसानी से संबंधित प्रश्न हो तो अपने संतोष कुशवाहा भैया से करें।
3: वही बारिश में पूरा धान हमारा था पूरा पाट दिया है सर, थोड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन पूरा सब पाट देगा
0: जी। कितने दिन तक पानी है आपके खेत में, मैंने दो चार दिन हो गए या एक हफ्ते, मतलब उतना पानी भर गया है जो खेत में, कितने दिन हो गए?
3: हो गया सर, बारिश हो रहा है, 10 दिन से ऊपर हो गया।
0: अच्छा 10 दिन हो गया, हाँ तो 10 दिन हो गया तो पानी निकास की व्यवस्था नहीं है उसमें?
3: हाँ, और नाला है सर, नाला में ना पानी पूरा आकर के पूरा पाट दिया, सब बालू पाट दिया है।
0: अच्छा, नहीं तो जैसे एक तो होता है कि थोड़ा जैसे बालू पाटेगा तो एक कोई पार्टिकुलर एरिया में और थोड़ा सा एरिया में पाटेगा, आपको अगर पटा होगा तो पानी पूरी खेत में लगा होगा, पानी लगा होगा ना पहले तो ये पानी लगा होगा, पाटना मतलब ये हुआ कि कहीं बांध टूटा तो पूरा मिट्टी उससे बह करके आया तो एक आध दो बिस्वे में ऐसा हुआ होगा, ऐसा स्थिति ऐसा हुआ है तो उस स्थिति में देखिए जहाँ पे पानी, जी जी समझ गए आपकी बात, उस स्थिति में देख लीजिए कि जहाँ पे आपका अगर मिट्टी से पाट दिया है उस स्थिति में लगभग वो एक आख दो विश्व एक विश्व के आसपास जहाँ पे दो बांध होगा या जो बालू टाइप का जो पोर्शन होगा वो आकर के जो भी आप धान लगाए होंगे उसको भर दिया होगा, इस कंडीशन में उस जगह के जो रेता है या बालू है या मिट्टी है उसको हटा दीजिए या फिर उसको जो है थोड़ा सा सफाई टाइप में या मोटर चला दीजिए जिससे कि वो चारों तरफ फैल जाए, या अपने पैर से अगर वो गीला है तो थोड़ा सा धान बचाते हुए उसमें हल्का सा जैसे हम लोग खेत में जैसे यूरिया डालते हैं तो अपना पैर से हिलाते हैं ना,

0: उसी तरह से हिला देंगे तो संभवतः वो धान आपका बच जाएगा, जो नीचे से उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ब्रांचिंग होता है, वो ब्रांचिंग निकलने लगेगा, जब भी निकलने लगेगा तो आपका उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो पानी अगर ज्यादा होगा उस खेत में तो पानी निकलवा करके आप उसको कम से कम जितना रहना है उतना रख करके बाकी बहा दीजिए, किसी पोखरा तालाब में कहीं कहीं जा रहा होगा तो उसमें उधर डायरेक्ट कर दीजिए, तब आपका उसमें धान कुछ हो पाएगा फिलहाल के लिए। और उसमें अगर थोड़ा सा संभव होगा तो कुछ सल्फर थोड़ा सा अगर यूरिया के साथ अगर डाल देंगे तो लीचिंग पावर कैपेसिटी को बढ़ा देगा। जब लीचिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा तो आपको जल्दी जल्दी पानी आपके खेत और आपका जो है अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा।
1: बिल्कुल राजेंद्र भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कर लें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुशवाहा भैया, हम लोग बात करत रही हजा कि धान के फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में, तो कौन कौन कीट लग सकाना ये समय खास तौर से?
0: जी जी, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अभी 25 से 30 दिन का जो पौधा होगा
1: जी जी,
0: उसमें पत्ता लपेटक, सुंडी और ये जो आपका ग्रब्स है और दीमक, तीन चार तरह की जो समस्या है ये रहेंगी। इसके लिए आपको लगभग 40 दिन तक आपको ये देख लेना है, और आपको अगर 15 से 20 दिन में यूरिया के साथ फिप्रोनिल जो केमिकल आता है उसको डाल देंगे तो ये इसका समस्या निदान हो जाएगा। 40 दिन से अंदर एक दवा डाल देंगे 35 से 40 दिन में, तो वो आपको दीमक और इसका निदान हो जाएगा। और विशेष परिस्थिति में अगर रह भी गया, जैसे पत्ती लपेटक रह गया, सुंडी कहीं दिख रहा है तो वह रह गया, उस कंडीशन में आप क्यूनाल फास जो आती है आपको हर कृषि रक्षा इकाई आपके हर ब्लॉक में बना हुआ है, बीज गोदाम, राजकीय कृषि बीज भंडार, जैसे आप जहां से बीज प्राप्त करते हैं 50% अनुदान पे, उसी तरह से कृषि रक्षा इकाई हर ब्लॉक के अंदर होता है, तो वहां से आप संपर्क करके लेंगे तो आपको 50% अनुदान पे क्यूनाल फास भी आपको मिल जाएगा। तो क्यूनाल फास को लेकर के आप उसको 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपको एक तरह से पूरा लगभग 50 से 60 दिन तक का आपका कंट्रोल में आपका आ जाएगा। जे भी आपका 50 दिन का लगभग आप कवर कर लेंगे तो उसमें फिर आप एक टॉप ड्रेसिंग यूरिया यूरिया का आपको करना पड़ेगा। यूरिया यूरिया जब ही करेंगे तो आपका वो आ जाएगा, आपका जो भी ग्रोथ है आपका, जो हम लोग गांव में आना कह सकते हैं, बाली आना, तो बाली की जब स्थिति होगा तो वो आपका पूरे तरह से विकास करेगा और आपका ज्यादा से ज्यादा पाली और ज्यादा से ज्यादा जो ब्रांचिंग है आपकी, जो कल्ले की संख्या है वो सब जो है आपका मैनेज हो जाएगा और अच्छी उत्पादन आपको मिलना संभावित हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को जो लेट भी हुए हैं फसल उसमें हम लोग को हमेशा जो है प्रबंधन करके ही चलना रहेगा, तो हम लोग काफी हद तक इसको अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं।
1: बिल्कुल संतोष कुशवाहा भैया, जब अपन धान रेड़ा अवस्था में या फूटे के अवस्था में आवला तो वो समय कौन कौन ऐसा रोग बाया जौन लग सकना, या पहले से ओकर प्रबंधन जौन बा अपन किसान भाई लोग कैसे कर सकना?
0: जी, जैसे कि जे भी गाँव में आना शुरू हो जाता है
1: जी,
0: तो पौधे या जो भी बाली निकलना शुरू हो जाता है, उस समय तक जो अपने खेत होता है, जो जो हम लोग धान लगाए होते हैं, वो पूरा भर जाता है, पूरी तरह से वो पूरा एकदम माने सकस जाता है। और उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि मौसम भी कभी सरद, जैसे दिन में क्या हुआ जी कि धूप लगेगा और रात में सरद हो जाता है, मतलब ठंडी हो जाती है और ओस भी पड़ता है, तो दिन में धूप और रात में जब सरद होता है तो उसमें उमस पैदा हो जाता है, और जब उमस पैदा होगा तो उसमें नीचे जो है झोका रोग टाइप में, जैसे एक कह सकते हैं कि सड़न टाइप में पैदा हो जाता है, तो जब सड़न टाइप में पैदा होगा तो आपको दिखेगा कि जब आप एक हफ्ता बाद जाएंगे अपने खेत पे तो देखेंगे कि वहां का धान बैठा बैठा दिख रहा है या उस जगह खाली दिख रहा है, जैसे आप दूर से भी देखेंगे तो लगेगा कि उस जगह कुछ खा गया या उस जगह कुछ पतला हो गया, तो आप वहां से अंदाज कर सकते हैं जी कि कहीं ना कहीं हमारे धान के खेत में रोग लग गया है।
1: जी जी।
0: तो रोग के लिए आपको ये झोंका जो रोग है उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि एक मैंकोजेब, कार्बेंडाजेब या जो भी आपके पास उपलब्ध है या संसाधन है, या जो बीज भंडार से लाए या आपके राजकीय कृषि रक्षा इकाई से लाए हैं, वहां से आप जो लाए हैं उसी दवा

0: कर सकते हैं, जो फफूंद नाशी के रूप में होता है
1: जी
0: उसको आप प्रयोग करें, जैसे आप मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अच्छी दवा जो भी होगा, आप जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति होगा उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक विशेष ध्यान देना होता है कि जब शरद गर्म होती है तो उसमें बैक्टीरिया का भी आक्रमण हो जाता है। तो
1: जी
0: बैक्टीरिया का जब आक्रमण होता है तो उस समय भी आपको बचाव के लिए एक स्टेप्टोसाइक्लिन की एक छोटी छोटी पुड़िया आती है। आप देखें कि मैक्सिमम जो है पीला कलर का जो पुड़िया होता है, तो उसको लेकर के प्रत्येक टंकी में एक पाउच अगर आप डालते चले जाएंगे तो
1: जी
0: आपको जो भी एक फंगस से जो रोग लगा या बैक्टीरिया से जो लगा वो आपको निदान हो जाएगा।
1: सुन
0: एक किसान भाई, जैसे हम लोग जो बासमती टाइप में अगर हम लोग धान लगा रहे होते हैं तो उसमें हम लोग जैसे सोनभद्र के ऊपर वाला पार्ट जो आपका रावर्सगंज ब्लॉक और चतरा ब्लॉक, नगवा नगवा कम और इधर घोरावल, ये जो ऊपर का जो बेल्ट है इसमें लोग बासमती टाइप का भी खेती कर रहे हैं। या जहां हो सकता है कि सोनभद्र या पूरे जहां तक इसकी आकाशवाणी की आवाज जा रही है, जहां तक भी खेती कर रहे होंगे वहां तक ये देखेंगे कि अगर बासमती की खेती करते होंगे तो उसमें एक बीमारी आती है, एक पौधे की साइज से ऑटोमेटिक 2 गुना ऊपर हो जाना, मतलब वो ऑटोमेटिक ही लंबाई वो टाल हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है।
1: बढ़ जाना।
0: तो जब वो बढ़ जाएगा, जितना उसका जैसे 2 फीट होना चाहिए हाइट, अब वो ऑटोमेटिक जो है 5 फीट हो जा रहा है, 4 फीट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को भी हमको बचाने के लिए बासमती टाइप का, उसमें पहले से एक बहुत अच्छी दवा आती है जो फफूंद नाशी की कापर ऑक्सीक्लोराइड, उसका हम पहले से ही अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमको उसका मतलब वो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत हाइट ना जा करके हमको कम हाइट में भी उसका फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग का जो कल्ले की ग्रोथ हाइट ना हो करके कम हाइट में ही उसका वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करते हुए फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा। जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा तो हमको निदान हो जाएगा उसका। तो हमको
1: बिल्कुल
0: इसको भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि बासमती कुछ हद तक लोग अब अच्छी उत्पादन के लिए और अच्छे मुनाफा के लिए शुरू करना शुरू कर दिए हैं। तो इसको
1: बिल्कुल
0: हमको ध्यान में रखते हुए खेती करना है।
1: बिल्कुल संतोष भैया,
0: जी
1: दिखाएं आज आपसे अपने हेलो किसान कार्यक्रम में संपर्क बल, और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के, अपने पंच भैया लोगन के जानकारी मिलल आपके द्वारा, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: तो भोला भैया देखे, अभी हम लोगों ने संदेश सुन लिया जा, और उसे पहले जन फोन इन कार्यक्रम रहला, एक पर देखा अपन किसान भैया लोगन अपन समस्या के समाधान पौलन हा। जौन के संतोष कुमार कुशवाहा सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ के रलन हा। तो देखा सही बात है कि जब हम लोगन पंचायती में जुटेला तो हर समस्या के समाधान हम लोगन के मिल जाला। बस हम लोगन के सजग और सचेत रहे के चाहिए।
5: बिल्कुल बता सब है, जौन हिसाब से लोग शुरुआती में समझत रहे कि जौन बाकी हल्का पानी बरसे और हल्कन खेती करे के बातचीत चलत रहे धान के, लेकिन जवन पुरहर बरसात हो कि धान तो पूरा गड़ा गए। और लेकिन एमए जौन बाकी अब कीट रोग प्रबंधन कैसे करी, यह विषय पर लोग जानकारी लेवल चाहते हैं, और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जानकारी मिलल भी।
4: बिल्कुल,
5: और ऐसे अच्छा लोग जौन बाकी लाभ प्राप्त

0: करी हैं प्रयोग करके,
1: तो बिल्कुल ला
0: लेकिन
1: देखे, जब मिलेला तो भाई लगेला कि बाजार भाव में चाहे अनाज हो चाहे साग सब्जी हो लेके पहुंचल जाए, तो देखें आपके हाथ में बाजार भाव है कहाँ के है तो बता दें हम लोगन के।
0: तो दुधी मंडी के बाजार भाव कुंतल में बसंत कुशवाहा भैया भेजले हों, तो आलू आज वहाँ पड़ल है दुधी मंडी में 1200 से 1400 रुपया कुंतल, और लंबा वाला बैगन 1000 से 1200, गोल बैगन 2200 से 2500, मूली रहल 2200 से 2500, पालक 3000 से 3500, वहीं प्याज 4500 से 5000 रुपया कुंतल, और भिंडी 1200 से 1500, नेनुआ रहल 1600 से 2000 रुपया कुंतल, और लौकी 1200 से 1500, मिर्च रहल 3500 से 4000 रुपया कुंतल, और खीरा 2200 से 2500, अरुई 1800 से 2000 रुपया कुंतल, बंडा रहल 2500 से 3000, धनिया 15 से 15000 से 18000 रुपया कुंतल,
1: अच्छा।
0: और अदरक भी 15000 से 18000 रुपया कुंतल रहल, लहसुन 18000 से 20000 रुपया कुंतल,
1: अच्छा।
0: और फूल गोभी 4500 से 5000 रुपया कुंतल, वहीं पत्ता गोभी 2500 से 2800,
1: अच्छा
0: करेला आज पड़ल है दुधी मंडी में 3200 से 3500 रुपया कुंतल, और हरा वाला कोहड़ा जोनवा की 1400 से 1600 जोन कच्चा हो, और पक्का कोहड़ा 1200 से 1400 रुपया कुंतल, तरोई रहल 2500 से 3000, टमाटर 2200 से 2500 रुपया कुंतल, और चुकंदर 4500 से 5000, खेक्सा भी पड़ल रहल हाइब्रिड वाला 5000 से 5500 रुपया कुंतल, और नींबू रहल 150 से 200 रुपया सैकड़ा। ये रहल दुधी मंडी के बाजार भाव, बसंत कुशवाहा भैया भेज रहन, बहुत बहुत धन्यवाद बा उनके भी,
1: बिल्कुल
0: और हम लोग जौन बाकी फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जौन सुनल गई, संतोष कुमार कुशवाहा भैया सहायक जौन विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से, और चाहे ये जौन बाकी अपनी बसंत कुशवाहा भैया इतना बढ़िया बाजार भाव हर समय देत रहलन, इनके
1: भैया
0: मनमनसाय में कराओल जाए।
1: बिल्कुल देखे करावल जाए। देखे खाली अपन बसंत कुशवाहा भैया ही रहे, देखे दुद्धी वाला जो मंडी बात है वहां से आप भेजे ले, रापटगंज मंडी से बाबूलाल
0: बिल्कुल
1: मौर्य
0: बिल्कुल
1: भैया
0: बिल्कुल
1: हुआ,
0: बिल्कुल
1: घुरावल मंडी से
0: इंद्रासन भैया भैया
1: इंद्रासन हुआ, मधुपुर से अपन पुनवासी चौहान भैया हुआ, तो देखें जगह जगह से जब बाजार भाव हम लोगन के मिलत रहेला तो देखें अलग अलग जगह का अलग अलग भाव जब मिलेला तो लागेला कि अपन सौदा कहाँ ले जाए, लाकबा कहाँ हम लोगन के फायदा मिले,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो वहाँ हम लोगन जरूर प्रयास करेला जा। तो सबकर सहयोग देखा अपन मिलेला तबे देखे अपन पंच के पंचायती बैठेला
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और सबके अपन अलग अलग तरीके से जानकारी मिल जाला, तो कहीं ना कहीं देखा फायदे वाला ही अपने सौदा बा पंचायती। तो देखें हम लोगन के बराबर जुटत रहे के चाहिए, और खाली जानकारी ही नहीं, और जैसे कि आप कह लें कि मन फिर भी अपने पंचायती के क्रम है और महत्वपूर्ण क्रम
0: बिल्कुल
1: है, काहे
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: देखें जब
0: बिल्कुल
1: दिन भर के काम काज से थकहरी हो जाला तो अपन मन फिर सुन कर के ना थकहरी दूर हो जाला।
0: तो राज नारायण मौर्य और उनकर संगतिया भैया के दादरा हो
1: हाँ
0: तो सुनल जाए।
1: एकदम भैया।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026

0: शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: तो बोला भैया,
3: देखे
2: अभी हम लोगों ने संदेश सुन ली है, जो भी इच्छुक अपन अभिवर्ती अपने आकाशवाणी से जुड़ल चाहत हो, तो देखा युवा लोगन के खातिर एगो अच्छा मौका बा, अनुभव एक साझा करे के खातिर अपन अच्छा मंच मिले आकाशवाणी, तो जरूर जुड़े के प्रयास करे। तो देखे अब तो यही कहे के बा अपने पंच भैया और बहन लोगन से, के देखा बरखा बुनी के दिन बा, तो थोड़ा सा हम लोगन के सजग और सचेत रहल जरूरी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इस समय जन स्वास्थ्य पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, साफ सफाई की बड़ा आवश्यकता है।
2: बिल्कुल, हालांकि
3: साफ सफाई तो देखा मौसमी नहीं होके चाहे, इस स्वभाव में होके चाहे कि आदमी के हर समय जन बाकी साफ सफाई से रहे।
2: और देखा भैया संस्कार में भी रहेला, जब शुरू से महतारी बाप या फिर दादा दादी नाना नानी घर में क्यों कर रहल बा, तो बचवा देख के ही सीख जाला।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और अगर कहीं देखा हम लोगन सिखावत है बच्चों लोगन के, तो ये और भी बड़ी बात बा कि छोटे से उनके हाथ कैसे साफ करल जाए और कैसे साफ सुथरा रहल जाए, कैसे गंदगी ना फैलावल जाए। तो ये सब चीज देखा जब धीरे धीरे शुरुआती दौर से कहल जाला ना, कि देखा अगर मकान बढ़िया बनावे बा तो नींव मजबूत बनावल जरूरी।
3: अब निश्चित रूप से जैसे होला कि केहू कहे कि नहीं हाथ धोआ तब धोई, तो ये कोई बात नहीं है। अगर कहीं से भी काम करके आओ, तो बाहर से आओ, तो आदमी भोजन करे के हो तो निश्चित रूप से हाथ धोए, नहीं करे के हो तबो जोन बाकी साफ सफाई रहे चाहिए।
2: बिल्कुल, सिखावे से ज्यादा भैया देखा देख के जोन प्रवृत्ति होला सीखे के ना, वो ज्यादा अच्छा होला और हमेशा खातिन के हो जाला। तो निश्चित तौर पे जब हम वो काम करब तो अपन घर में बचपन भी देख करके ओके सीखी है और गुनी है। तो देखें यही के साथ कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगले पंचायती तक फिर जुटल जाए नए गीत और मतलब लोकगीत और जानकारी के साथ। तो चले के
3: तो सब पंचन के
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलीशा चिनॉय और अतीफ असलम को। इस गीत को लिखा था आशीष पांडे ने और संगीत था प्रीतम का। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं केके की आवाज में। फिल्म का नाम है जन्नत 2। बोल

0: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: जरा हटके जरा बचके, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे वरुण जैन, शादाब फरीदी और अल्तमस फरीदी को। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलते और संगीत था सचिन जिगर का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। शाम के 7:05 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य।
1: सभी श्रोताओं का हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है।
2: महिलाएं अपनी सेहत के प्रति कम सजग रहती हैं। घर परिवार का काम तो अच्छे से संभालती हैं, पर खुद का ध्यान नहीं रखती। कुछ बहनें खाने पीने से लेकर शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज कर देती हैं। इन्हीं आदतों की वजह से बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आज हम ल्यूकोरिया के बारे में जानेंगे डॉक्टर शुभदा सिंह जी से, जो ओबरा परियोजना चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये ल्यूकोरिया है क्या?
3: ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज, वेजाइना से चिपचिपा या दुर्गंध युक्त गाढ़ा पानी जो निकलता है, उसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं।
2: अच्छा, जो वही सफेद पानी की जैसे कई महिलाओं को ये शिकायत होती है, वही ल्यूकोरिया है। इसके कितने प्रकार हैं?
3: अमूमन देखें तो चिकित्सा के भाषा में अगर हम समझाएं तो दो तरह के ल्यूकोरिया होंगे। पहला, जो मासिक के समय पानी जैसा सफेद अगर डिस्चार्ज या जो जिसमें दुर्गंध नहीं हो, ऐसा अगर पानी निकल रहा है जो मासिक के समय आता है और महीना होने के बाद खत्म हो जाता है, उसके लिए उपचार की जरूरत नहीं।
2: अच्छा।
3: दूसरा, जो गाढ़ा हो, काफी दिन तक आ रहा हो, बंद ना हो, उसमें दुर्गंध हो या पीलापन हो।
2: अच्छा।
3: या लॉन्ग टर्म रन तक काफी दिन तक आप प्रयास कर रहे हो, खाने पीना सब कुछ ठीक है, तब भी आ रहा हो। दूसरी तरह का जो है उसमें उपचार की जरूरत होती है।
2: अच्छा।
3: ये कई कारणों से हो सकता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका

0: चलना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, कमर में दर्द होना, बार बार पेशाब होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन लगना, इसके अलावा आंख के नीचे कालापन लगना या चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी चीजें जो करने में पहले दिक्कत नहीं होती थी उसके बाद थकान लगने लगना, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वही सारी चीजें जैसे भूख ना लगना, ये सारी लक्षण है, शुरुआती लक्षण है जो कि आगे प्रोग्रेस करके और बढ़ जाते हैं,
1: लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये किन कारणों से ल्यूकोरिया हो जाता है?
0: देखिए कई कारण हैं। अगर सबसे कॉमनेस्ट देखा जाए, कॉमन से शुरू किया जाए, तो औरतों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। सबसे उसमें सफाई, प्रॉपर सफाई रखना, अंडर गार्मेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं उन्हें धूप दिखाना, अच्छे से धुलना, ये सारी चीजें जो समाज की वजह से कई औरतें नहीं, धूप में नहीं सुखा पाती, ये सारी
1: चीजें महसूस करती हैं।
0: आप जो पानी यूज कर रही हैं उसको देखना कि साफ पानी है कि नहीं, अगर साफ पानी नहीं है तो भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में खाने पीने की कमी, जैसे ब्लड की कमी की वजह से या तेल मसाला ज्यादा खाने की वजह से, कई और भी रीजन है जो कि मान लीजिए बार बार अबॉर्शन जिनको हुआ है अच्छा। उनके में भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: या एल्डर्स में देखें जो बूढ़ी औरतें हैं उनमें मधुमेह की शिकायत या लॉन्ग टर्म कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है, इन सारी चीजों में हो सकता है। इसके अलावा एक और है, असुरक्षित अगर संबंध है, इन सारी चीजों में भी ये प्रॉब्लम, पार्टनर टू पार्टनर, कई ऐसी बीमारियां जो कि वैरी भी कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी हो सकती हैं।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा मान लीजिए अगर अधिक तनाव में, आजकल का जो जीवन है, वर्किंग वुमेन है, बाहर का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, या घर में भी औरतें हैं तनाव युक्त जिंदगी जिसमें नींद पूरी नहीं हो पा रही, कभी हमेशा थका थका लग रहा है, ये सारे रीजंस हैं जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है और ये सारे इन्फेक्शन पकड़ते हैं।
1: तो ये तो आपने सब कारण बताए कि ल्यूकोरिया के कारण क्या है। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या बहुत रेस्ट करना है महिलाओं को और फिर दवा खाने की भी जरूरत पड़ती है क्या?
0: देखिए डिपेंड्स कि आपको बीमारी किस स्टेज में है। अगर शुरुआती लक्षण है जो कि हल्का पानी गिर रहा है और लगातार गिर रहा है जिसकी वजह से अंडरगार्मेंट्स भींगे हुए हैं और वो आप फील कर पा रहे हैं, तो उसमें शुरुआती लक्षण में सिर्फ दवा और सप्लीमेंट्स जो विटामिन के होते हैं डॉक्टर से सलाह लेके तब उन सारी चीजों को खाने से ही वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, ये समय के साथ बढ़ते गया, बढ़ने से हो सकता है कि और पीलापन आ रहा है या और गाढ़ा हो रहा है या इचिंग और बढ़ रही है, सूजन हो रही है, इन तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो ये सारी चीजें फिर रेस्ट की तरफ ज्यादा जाती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बूढ़ी औरतें हैं जो कि इस समस्या से वो ज्यादा निग्लेक्ट करती है, मासिक चला गया है लेकिन तब भी सफेद पानी आ रहा है, या मासिक जाने वाला है तब भी सफेद पानी गाढ़ा करके आ रहा है, हल्का लालिमा लेके आ रहा है या पीलापन लेके आ रहा है, तो ऐसे केस में जो ज्यादा एज की औरतें हैं उनके अंदर कैंसर की भी दिक्कत हो सकती है।
1: अच्छा।
0: ये उसके भी शुरुआती लक्षण में आ सकता है। तो उस तरह से आपकी इन सारी चीजों को जो कि आप निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई आज है कल नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना है
1: जी
0: दोनों तरफ से,
1: मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर किसी को है ये शिकायत तो क्या क्या परेशानियां आती हैं?
0: देखिए अगर परेशानियों के कहें तो दो तरह से समझिए, अगर कोई यंग लड़की है जिसको ये परेशानी हो रही है, डिस्चार्ज शुरू हुआ है, तो उसको सबसे पहले कमजोरियां शुरू होंगी, कमर में दर्द, आंख के आगे धुंधलापन, कालापन, या फिर लगेगा पढ़ाई में मन ना लगना, हमेशा कमजोर कमजोर फील होना, जो स्कूल में बहुत अच्छे थे वो फिर परफॉर्मेंस डाउन होने लगना, ये सारी समस्याएं जो कि आगे चल के अगर लॉन्ग टर्म रन में मासिक में देरी होना, क्योंकि शरीर में विटामिन नहीं है तो मासिक भी देरी से आ सकता है, इररेगुलर हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें आती है। अगर ओल्ड एज तरफ देखिए, आप अगर समझ लीजिए जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और उनके इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या ऐसे पानी जा रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चे समय से पहले हो सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और भी बच्चों के साथ इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे बच्चे का वजन कम हो सकता है, अंदरूनी अगर इन्फेक्शन रहा तो माँ को भी आगे चल के रिस्क रह सकता है।
1: अच्छा।
0: कई तरह से कई बार ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है, जो बच्चे होने के बाद अमूमन 6 हफ्ते तक रुक जानी चाहिए, वो लोगों में और बढ़ सकती है। तो ये सारी समस्याएं हैं। ओल्ड एज में देखें, ओल्ड एज में मैंने बताया ही, अगर लालिमा देखे आ रहा है या पीलापन ज्यादा है, एक आपकी शरीर में ओल्ड एज में कम कैल्शियम की कमी अपने आप होती है, उसमें अगर आप पानी जैसा लूज करते जा रहे हैं और

0: उस तरह से आप अपना देखभाल नहीं कर रहे तो आपको एक्सट्रीम वीकनेस लगेगा।
1: हाँ।
0: आप उस चीज से उभरना, जो एक यंग लड़की उभर सकती है उतना एल्डर नहीं उभर
1: सकती,
0: तो उस चीज के लिए भी आपको शुरुआती दौर में अगर ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत लग रहा है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: और तो कुछ घर में रहकर भी उपचार किया जा सकता है, मान लीजिए भाई नई बहनें पहुंच पा रही जल्दी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो घर में रह के क्या कर सकते हैं?
0: देखिए सारी चीजें घर से ही शुरू होती हैं। अगर कोई भी चीज कहे तो घर से ही प्रॉब्लम शुरू होती है, जड़ भी घर में है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए शुरुआती दौर पे ही शुरू हो रहा है और आपने घर में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ दिक्कत है, आप उसे हटा देंगी उसी तरह से। ल्यूकोरिया खास करके, मैं और बीमारियों को नहीं कहूंगी, बट ल्यूकोरिया एक ऐसी समस्या है जो अगर थोड़ा सा ध्यान देके घर के लेवल पे ही अगर आप उसको कर लेते हैं तो वो चीजें रिग्रेस कर जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सिवियरिटी है भी, आप दवा भी खा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिनचर्या में या अपने घर में इन सारी चीजें जो मैं अभी बताऊंगी उनको नहीं इनकल्केट करेंगे तो दवा भी फिर से वो रिमिट कर जाएगी। फिर से हो सकता है, हो सकता है कि दवा खाने भर तक सही
1: रहे
0: और फिर उसके बाद दोबारा
1: दवा बंद की और फिर हो जाए।
0: उसमें सबसे पहले आता है हाइजीन, जो हम अपने पेशेंट को यूजुअली बोलते हैं कि कभी भी नहाने के बाद एक अलग टॉवल रखना चाहिए जिससे अपने योनि या प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ करना चाहिए, उसको सुखा के तब अंडरगार्मेंट्स पहनने चाहिए। अंडरगार्मेंट्स भी आप कॉटन के पहने वो ज्यादा बेटर है, और उन जो टॉवल सन से एकदम कॉन्टेक्ट में रख के अंडरगार्मेंट्स भी हो, इन दोनों चीज उसको सुखाना चाहिए। गीलापन रहेगा, पसीना रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी तो ये बढ़ेगा। इसके अलावा खान पान में देखिये, खट्टी चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं जो कि औरतें अमूमन बहुत पसंद करते हैं, जो ये सारी चीजें आप खाइए, बिल्कुल खाइए, हर चीज तो रोक नहीं सकता इंसान, लेकिन आप कम में खाइए तो आप उसको कंट्रोल करिए। इसके अलावा मान लीजिए जो कई औरतें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी अगर रुक रहा है तो अपने से दवा खा लेती हैं या बार बार दवा खाती हैं, उन सारी चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। पेसिंग भी जरूरी है, तुरंत तुरंत में औरतें भी कमजोर हो जाती हैं इसके अलावा, लेकिन वो दवा खाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उन सारी चीजों में भी कमजोरी आने से ये सारी चीजें होती हैं। चौथा चीज जो आमूमन ग्रामीण औरतें सबसे ज्यादा करती हैं वो है स्टेराइल पैड ना यूज करके कपड़े यूज करना। कपड़े बहुत ही घातक होते हैं, आप लाख सफाई से करिए या कुछ भी करिए, उससे बच्चों का, यंग लड़कियां जो होती हैं स्किन बहुत पतली होती है, वहां की स्किन आमूमन बहुत पतली होती है, उसमें रगड़ खाने से और इन्फेक्शन का डर रहता है। चार चार पांच पांच घंटे पे पैड बदलना, लॉन्ग टर्म पैड अगर आप लगा के रखेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत करेगा। ये सारी चीजें इन्फेक्शन को खुद न्योता देना है। अगर आप इन सारी पीरियड्स के समय पे अच्छे से वॉश करना, सफाई रखना, मेंटेन रखना, ये सारी चीजें, अमूमन कई लोग पीरियड्स के समय नहाते नहीं, ये ऐसा कई धगा धारणा
1: है कि नहाना नहीं है तीन चार दिन,
0: बट ये गलत है। आप उसको सफाई रखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, आप एक प्रॉपर तरह से उसको उस टाइम को बिता पाएंगे
1: जी।
0: और क्लीनिंग और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट रहे।
1: अगर ल्यूकोरिया की दिक्कत हो गई तो क्या दिनचर्या रहनी चाहिए?
0: ल्यूकोरिया की अगर दिक्कत है तो खास करके आपको एक प्रॉपर दिनचर्या मेंटेन करनी होगी। सुबह जल्दी उठिए, अमूमन औरतें जो होती हैं वो दिन के काम में सब चीज भूल जाती हैं, 12 एक बजे खाना खाती हैं, वो सारे खाना आप कुछ भी खा लीजिए वो आपको शरीर में लगेगा नहीं। एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेकफास्ट लेके दो दो ढाई ढाई घंटे पे कुछ खाते रहिए, पानी का सेवन बढ़ा दीजिए, शरीर में फ्रूट्स या ये जो रेशे वाली वेजिटेबल्स होते हैं इन सारी चीजों को लेना बढ़ा दीजिए। ये सारी चीजें आपको इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगी और आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में भी हेल्प करेंगी। तेल मसाला नमक ये सारी चीजें अगर ल्यूकोरिया है तो खास करके कम कर दीजिए, जब तक ये सारी चीजें कम नहीं होंगी लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलेगा
1: जी।
0: इसके अलावा रात में नियमित एक समय पे सोना, इसके अलावा वॉक करना।
1: तो और हमारी बहनों को क्या कहना चाहेंगी और इसका उपचार क्या है?
0: देखिए उपचार आपको, अगर मैंने बताया ही कि कितने तरह के हैं और किस तरह का, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लगता है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट करें। इसकी एक प्रॉपर थेरेपी चलती है, वो थेरेपी बिना दवा बीच में छोड़े प्रॉपर जितने दिन दिया जा रहा है उतने दिन खानी होती है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि देखिए आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो सारी चीजें उसके सराउंडिंग में होती है। आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या ओवरथिंक करेंगे या इस चीज को प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम जितनी है नहीं उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर चीज का उपचार है, हर चीज का सोल्यूशन है। स्ट्रेस ना लेके अगर मेन चीज है आपको विजिलेंट रहना, इस दिनचर्या में अपने जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें ध्यान दीजिए, और अगर ऐसा
2: गुड एनो यूरिया प्लस की

0: बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, बेवही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों को समर्पित हमारा बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, कहा प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियाँ। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में तय हुई उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा इन्हीं कार्मिकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी हैं। इस नई व्यवस्था में 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर एक जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।
2: डबल इंजन की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू, उसे तकनीक दिया, उसे बाजार दिया और उसे मार्केट के साथ जोड़ने का काम आज परिणाम हमारे सामने है। कारीगर के हाथ में जो कला थी, जब उसे बाजार दिया गया, बाजार मिला तो उसका हुनर प्रदेश में रोजगार बना, रोजगार बढ़ा तो वही कारीगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बना।
1: पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को आज अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में अयोध्या की मणिराम दास छावनी में आयोजित ट्रस्ट की बैठक के बाद घोषित की गयी। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और श्रीराम मंदिर परिसर से संबंधित प्रमुख परिचालन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रस्ट के अंतरिम

0: सचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उस ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका में कमांड करते उस एरिया को उसके लीडर थे।
0: अंतरिम महासचिव ने बताया कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के नए महासचिव होंगे और महेश भागचंद का नए कोषाध्यक्ष होंगे।
1: मैंने इस काम के लिए हमारे श्री गोविंद देवगिरी से प्रार्थना किया, महाराज जी ने उसको स्वीकार कर लिया और आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के पद के पर महाराज जी कार्यरत हैं। महाराज जी के पास में कोषाध्यक्ष का भी दायित्व था, तो महाराज जी ने ये कहा कि कोषाध्यक्ष जो है वो महेश भागचंद का, जिसके बारे में मैंने बताया है, वो इस दायित्व का निर्वहन करें। नहीं,
0: श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे। सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: एक माह के इस व्यापक अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जन भागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। आशीर्वाद का दिया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र एवं घर घर से राष्ट्र तक, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जन सेवा महाकुंभ इसके प्रमुख कार्यक्रम होंगे। कल अभियान की कार्ययोजना पर उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत हो। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवार अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रमुख कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के ऐतिहासिक और लोकप्रिय स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा की थीम पर लेजर शो आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मथुरा में इस बार जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। वहीं आज वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम मंदिर से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में जन्मोत्सव के लिए उपहार सामग्री भेज दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पर्व के मद्देनजर बसों और बस स्टेशनों पर सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु जी ने बताया कि पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
3: तो ये कृष्णा नाइट, इसमें आपको बहुत सारा भगवान का सुंदर श्रृंगार, फूल बंगला, अभिषेक, दूध दही शहद, 1008 तीर्थों के जल से अभिषेक दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलने वाला है और इसमें आप सब भगवान का दर्शन पा सकते हैं, इस सेवा को कर सकते हैं और सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है।
0: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष HPV टीकाकरण अभियान कल से 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित होने

0: वाले इस अभियान के दौरान 14 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनबी सिंह ने पात्र किशोरियों से टीकाकरण कराने की अपील की।
1: 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ए जो टीका है उनके सीए सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर का बचाव का एकमात्र तरीका है। एचपीवी वैक्सीन का टीका लगवा के अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखें।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर, बलिया में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार बाढ़ राहत को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।
2: जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रकोप है उसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को सक्रिय कर रखा है। चित्रकूट मंडल में लगातार मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, वहाँ सतर्क रहने कहा गया है और सभी जो भी जहाँ बाढ़ आई थी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाढ़ राहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ। कहा प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियां। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रघुवीर सिंह, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ से की गई भेंटवार्ता, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। भेंट करता है अतीश कुमार श्रीवास्तव।
6: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतीश श्रीवास्तव। श्रोताओं आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ते हैं और बर्बाद होते हुए भी उन्हें सभी ने देखा है। तो इस विषय में 2025 में एक प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनाया गया। तो इसी विषय में ज्यादा जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है रघुवीर सिंह को। आप एडवोकेट हैं हाईकोर्ट लखनऊ में। रघुवीर आपका स्वागत है।
7: नमस्कार सर।
6: तो आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे कि क्या है ये एक्ट और कैसे इसका नियंत्रण किया जाता है, इसको प्रमोशन करने की जरूरत है या नहीं है, इसके बारे में बताइए।
7: सर जैसे कि आज हमारा जो विषय है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ये नाम में देखिए रखा हुआ प्रमोट कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग और साथ ही साथ रेगुलेट करने की भी कोशिश कर रहा है। इसमें बताया गया कि जो ई स्पोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं, जो एजुकेशनल बेस्ड है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग है और जिन्हें दांव की तरह या सट्टेबाजी की तरह, बेटिंग की तरह यूज किया जा रहा है, जिसमें रियल मनी भी इन्वॉल्व है, उन्हें मना कर रहा है। यानी जो स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेम्स जिसमें किसी तरह का स्किल कौशल है ही नहीं, उनको मना कर रहा है, उन्हें प्रोहिबिट कर रहा है कि इनका चलन नहीं होगा।
6: अच्छा रघुवीर, हमने देखा है कि जैसे कि कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है, सामान्य सा भी मैच चल रहा है, तो उस

0: इसमें सट्टेबाजी होती है, लोग बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत से लोग कमाते भी हैं, बहुत से लोग डूबते भी हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए सर, अगर हम उदाहरण के तौर पे ले तो आपने सुना होगा ड्रीम इलेवन बहुत चर्चा में था, रमी सर्किल, ये सब ऐसे गेम है जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, आप एक तरीके से दांव लगा रहे हैं, सट्टेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है एक्सपेक्टेशन है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। इसे मना किया जा रहा है कि ये तो इसमें तो घर के घर लूटे चले जा रहे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो वो उसको एक तरीके से जुआ, इसलिए इसे मना करता है ये एक्ट।
0: तो फिर भी इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सारे गेम्स जो सट्टेबाजी है वो अभी भी भरपूर जारी है, तो इस पे कैसे नियंत्रण किया जाएगा?
1: अगर हम गौर से देखें तो इसी एक्ट में सेक्शन 8 बताता है सरकार वो इससे रिलेटेड अथॉरिटी बनाएगी, वो अथॉरिटी गवर्न करेगी कैसे ई स्पोर्ट्स या इस तरीके के गेम्स का रेगुलेट किए जाएं, ऑनलाइन खेले जाएं। सबसे खास बात ये कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये अथॉरिटी इस हिसाब से वर्क करेगी जिस तरीके से जो डायरेक्शंस दिए गए कि जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो, जो बताता है कि ये फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, उनके अगेंस्ट नहीं है, तो ये अथॉरिटी है वो काम करेगी किस तरीके से रेगुलेट करना है ये सरकार बनाएगी।
0: तो अभी ऐसा कोई अथॉरिटी का गठन हुआ है क्या?
1: सर ये सरकार इस पे काम कर रही है, बन रही है, और ये अथॉरिटी जो गेमिंग से रिलेटेड है रेगुलेशंस है इनके लिए बना दी गई है, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसको इसमें रजिस्टर कराया जा रहा है जिससे कि फॉर द पब्लिक बेनिफिट या किसी तरह का एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब सिंपल सी बात है कि एजुकेशनल स्किल पे ध्यान देकर के ऐसे ई स्पोर्ट्स को बनाया जा रहा है जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, और ऐसे स्पोर्ट्स को मना किया जा रहा है या प्रोहिबिट किया जा रहा है जो अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ पब्लिक हो, जैसे मैंने आपको बताया वेजरिंग, दांव लगाना, सट्टा लगाना, गैम्बलिंग एक तरीके से, इसको ये अथॉरिटी देखेगी कि कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं।
0: रघुवीर, ये बात तो समझ में आ रही है कि कोई अथॉरिटी बन रही है और वो अपना काम करेगी, गाइडलाइंस देगी कि लोग कैसे काम करें, लेकिन अगर फिर भी कोई पकड़ा जाता है या करते हैं लोग, जुटे हुए हैं लोग, लगे हैं, तो उसपे कोई सजा का प्रावधान है या कोई फाइन है या कोई और भी कानून काम करता है?
1: जी सर, अगर इस संबंध में हम देखें तो सेक्शन 5 ऑफ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का ये बताता है कि कोई भी ऑनलाइन गेम या एप्लीकेशन जो ये बता रहा है कि इसमें स्किल नॉ इन्वॉल्व होकर के एक तरीके से वेजरिंग है, बेटिंग टाइप का लगाया जा रहा, उसे वो अथॉरिटी बिल्कुल बैन कर देगी और ऐसी कंपनीज या ऐसे पर्संस के खिलाफ तकरीबन सेक्शन 9 के हिसाब से 3 साल की सजा और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फाइन भी लगाया जाता है।
0: तो ये राशि तो 2 करोड़ तो बहुत बड़ी राशि है।
1: जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखिए इसी गेम के थ्रू कितने मासूम लोगों से जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनसे कितना पैसा ऐट रहे हैं, वेलफेयर ऑफ पब्लिक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, इस वजह से ये राशि तो और बढ़ाई जा सकती है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस।
0: तो इसमें जो एजेंसीज हैं तो ये पुलिस से अलग होंगी?
1: बिल्कुल सही है, आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम, ये एक तरीके का साइबर क्राइम है, तो आप डायरेक्ट ही जाकर के पुलिस से अपनी इस समस्या के बारे में कह सकते कि मैं ऐसा ऑनलाइन गेम में इन्वॉल्व हो गया था, मुझसे इतना पैसा इन्वेस्ट कराया गया और मुझे बताया गया कि मैं इतना पैसा जीत सकता हूँ सट्टा लगा करके, अगर आपको लगता आप इन्वॉल्व हुए हैं, आपका पैसा गया, तो आप साइबर क्राइम पुलिस को डायरेक्ट इसके बारे में सूचना दे सकते हैं।
0: हर जिले में साइबर क्राइम का एक ऑफिस होता है पुलिस का?
1: जी जी सर, हाँ, मतलब साइबर क्राइम थाना तो आपने देखा होगा मोस्टली हर जगह होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता ही है मिनिमम।
0: तो और एक जो कंप्लेन नंबर है जैसे कि 1930 कहते हैं,
1: जी जी,
0: इसकी क्या उपयोगिता?
1: देखिए आप ये तरीके से डिजिटल अरेस्ट वाली अगर बात कहें, ये डिजिटल ट्रैप ही तो है, ऑनलाइन गेम खेल करके आपका पैसा इन्वेस्ट कराया गया, एक तरीके से डिजिटल ट्रैप, ऑनलाइन गेम कन्वर्टेड इनटू डिजिटल ट्रैप, आपको फंसा लिया गया, आपको ये एक्सपेक्टेशन दी गई कि आप पैसा जीत सकते हैं,
0: आप कमा सकते हैं,
1: कमा सकते हैं जुए की तरह, तो ये तो एक तरीके से डिजिटल ट्रैप है। तो अगर देखा जाए तो अथॉरिटीज इसके बारे में रेगुलेट कर रही हैं और पुलिस साइबर क्राइम के तहत इसको देख भी सकती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करती है,

0: गेमिंग ऐप को, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को इसलिए बैन किया जाता है।
1: ये बात समझ में आती है कि मान लीजिए कोई अनजाना व्यक्ति या कोई स्टूडेंट या उसके साथ किसी घटना घट जाती है, तो सबसे पहले क्या करे, कहाँ जाए? एक तो परेशान होगा वो, मेंटली परेशान हो जाते हैं, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि इतनी राशि चली गई है, तो इसका निदान करने वो सबसे पहले कहाँ जाए?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें जिसने इन्वेस्ट किया है, जो इससे मतलब अफेक्ट हुआ है, जो विक्टिम है, वो विक्टिम सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट करे पुलिस से कि बताए कि मैं इस तरीके के जाल में कुछ जालसाजों ने मुझे फंसा दिया है, गेम ऐप बना करके मुझे बताया कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए, गेम खेलिए, आप जीत सकते हैं। सबसे पहले पुलिस के पास जाकर के इसके बारे में बताए और शांति से जो भी चीजें पता है उन्हें पुलिस को सूचित करें,
1: जानकारी दे।
0: जी,
1: तो जैसे कि बड़े जिलों में साइबर क्राइम के ऑफिसेज हैं, लेकिन किसी दूरदराज गांव में है व्यक्ति, तो उसे कहां जाना होगा?
0: हर जगह पुलिस तो उपलब्ध है, थाने हैं, हम ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं, ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं इस बारे में। अगर लग रहा है कि आप तुरंत ही शिकायत भी कर सकते हैं पुलिस के थाने पर जाकर के भी, ऑनलाइन भी। अगर वो कहते हैं कि आप इसकी लिखित शिकायत कीजिए तो लिखित शिकायत भी आप कर सकते हैं। दूर दराज से लेना देना नहीं, ऑनलाइन गेम, इंटरनेट तो आपका चल रहा था, तो इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पर गेम खेल करके ऐसे जंजाल में फंस सकते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं। बिल्कुल।
1: तो रघुवीर जी, हम लोगों ने बात की ऐसे गेम्स की नुकसान पहुंचा रहे हैं जो सट्टेबाजी करते हैं, तो आपने जो एक्ट में ही है कि प्रमोशनल गेम्स भी हैं, तो ऐसे कौन कौन से गेम्स हमारे श्रोताओं को बताएं?
0: सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्ट एम करता है ई स्पोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो एजुकेशनल स्किल बेस्ड है, लेकिन मना किन गेम्स को करता है? जो सिर्फ वेजरिंग टाइप के, जो सट्टा लगाने वाले, लेकिन ये ई स्पोर्ट जो एजुकेशनल बेस्ड हैं, वो एक तरीके से ऐसे गेम है जो कॉम्पिटिटिव इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो किसी पर्सन की फिजिकल डेक्सटेरिटी, मेंटल एजिलिटी, जो मानसिक बौद्धिक क्षमता को और अच्छी तरीके से निखारे, विकसित करें, उन गेम को, उन ई स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देते हैं जो स्किल बेस्ड है, एजुकेशनल स्किल बेस्ड है, उन तरीके के गेम्स को ये सपोर्ट करता, प्रमोट करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑनलाइन चेस गेम्स, लूडो गेम्स, जो आपकी स्किल को दिखा रहे हैं। चेस गेम्स है प्योर स्किल, एजुकेशनल स्किल को दिखाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को वो और इंक्रीज करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे गेम्स हैं जो लगता है कि हाँ ये जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और ऐसे गेम्स जो बताए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में, अथॉरिटी जिन्हें अपने यहाँ रजिस्टर कर दिए कि इन गेम्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो भारतीय युवा हैं, जो यूथ है हमारा, इंडियन यूथ, उनको और अच्छा बनाने के लिए, उनको और प्रोटेक्ट करने, उनकी मेंटल एजिलिटी को और बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता के विकास में जो सहयोगी बन रहे हैं, उन गेम्स को बढ़ाने के लिए।
1: तो रघुवीर, हमारे श्रोताओं को एक बात ये बताई कि अभी तक हमने बात की इंडिविजुअल की, जो सट्टा लगा रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, हमने देखा कि कुछ लोग कंपनी बना लेते हैं, वो कंपनी के थ्रू इस तरह का काम करते हैं, तो क्या उनके प्रति अलग सजाए हैं, अलग जुर्माना दिया जाता है उन्हें, तो इस बारे में कुछ बताइए।
0: सर, आपका कहना बिल्कुल सही, इसी एक्ट में जो हमारा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, इसका सेक्शन 11 यानी धारा 11 बताती है कि अगर इसी तरह का कोई ऑफेंस अगर कंपनी करती है तो कंपनी तो लायबल होगी, साथ ही साथ उस कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा है वो सभी लायबल होंगे, और उनसे अच्छा खासा जो जुर्माना उन पे लगाया जाता है, और साथ ही साथ उस कंपनी को ऑल टाइम के लिए बैन भी किया जा सकता है कि अब वो पर्पस का काम जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा फर्दर अगर किसी और मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होंगे तो उसको भी मना कर दिया जाता है, और इन पे अच्छा खासा जुर्माना भी लगाया जाता है, मैक्सिमम 3 करोड़ तक का। अब उनका कंडक्ट देखा जाता है, किस कंडक्ट में उन्होंने इस तरीके के ऑफेंसेस, इस तरीके के जुर्म किए हैं ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड,
1: एक तरह से उन्हें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट

0: कर दिया जाता है।
1: जी जी बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
0: तो रघुवीर एक ऐसा विषय है जितना सरकार उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है वो किसी दूसरे तरीके से निकल के बाहर आता हुआ दिखता है। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी, इसके खतरों के बारे में बताया और सचेत रहने की सलाह दी है, तो आप स्टूडियो आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे रघुवीर सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ से की गई भेंटवार्ता प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। भेंट करता थे अतीश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार मंगलवार और गुरुवार को शाम 6:50 से लेकर शाम 7:20 तक।
7: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शिल्पा राव और अरिजीत सिंह को। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और संगीत था प्रीतम का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

स्त्री टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शिल्पा राव और वरुण जैन को अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे। आकाशवाणी ओबरस इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस FM 102.7 पर। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत लखविंदर वडाली और नीति मोहन की आवाज में। फिल्म का नाम है कोई जाने ना।

कोई जाने ना इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लखविंदर वडाली और नीति मोहन को। मनोज मुंतशिर के बोल थे और संगीत था रोचक कोहली का। और इसी के साथ कार्यक्रम सब रस अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। शब्द रचना नुसरत बद्र के हैं और आइए सुनते हैं अभिजीत को।

शब्द रचना गुलजार के थे और आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और साधना सरगम को। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जिसे लिखा है नुसरत बद्र ने और आवाज है सोनू निगम की।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: हैप्पी फिर भाग जाएगी। आइए इस फिल्म में सुनते हैं शिवांगी भयाना और उदित नारायण को। मुदस्सर अजीज के बोल हैं और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। शब्द रचना जमीर काजमी के हैं और आइए सुनते हैं पंकज उदास को।

0: नमस्कार। यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही

0: मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

शब्दशना गुलजार के थे और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।

0: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति, ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल

0: श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा।

0: फकीरा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।

साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीत दिया था रवि ने। काजल, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। आकाशवाणी ओवरस इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोले बिसरे गीत FM 102.7 पर। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है शागिर्द।

0: चल चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रासबाड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजमान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। चार दिनों की मजबूत करने की कोशिश है। इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और इसे उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ

0: कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक, एससीओ के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
1: स्थापित किया है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया और उनके साथ में हमारे जो बिल C5+1 1991 से पहले और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में, अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के जो उनका ट्रैफिक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी भी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई, एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सैंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जब जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि क्रिटाइज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है वो काफी अलाइंड है भारत के साथ, लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी मैं समझता हूँ एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
0: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यावहारिक है और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
2: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है, वो भारत को

0: प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूव, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश है, फिलीपींस जैसे देश है, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये
1: जी
0: देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है,
1: जी
0: उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है, इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 GW बाय 2047। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि ऑलरेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
0: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार

0: है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया, ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की यात्रा की थी तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
0: प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है इसका ये बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम कर।
1: और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी युद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है।
1: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
3: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपने एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने, इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी को नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ ईरान,
1: जी
3: कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, ISIS आया वहां पे, ISIL आया, अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं। तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी। तो ये जो सारी सीमाओं का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था, और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, तो मैं समझता हूं कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर परवेज़ के

0: थे और तभी वो बातें हुई हैं। देखिए, जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का थ्री पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
2: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की के संबंधों की चर्चा करते हैं, तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियो पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति, और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं, तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए, और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था, और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना जीडीपी इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत यूएनएससी में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहां पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
3: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है. हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर

0: और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे?
1: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूँ कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
0: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा। शब्द रचना वर्मा मलिक के हैं और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने। वारिस, आइए इस फिल्म में सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। फिल्म का नाम है नगीना। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नगीना इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज को।

0: नहीं।
1: कभी कभी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है सिलसिला। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है शिव हरी का।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास को। फिल्म का नाम है हीरो। संगीत यह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हीरो इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास को और साथ में लता मंगेशकर को। और इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान। आइए सुनते हैं राग जोग।

0: अभी आप उस्ताद विलायत हुसैन खान के स्वर में सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश

0: पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा
3: FM 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरत का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राज्यों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को

0: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भाग चंद का और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रम के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।